0: Move for 10 आ गया है This Girl Can का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।
2: दिस इज इंस्पायर FM विद यू 24 आवर्स अ डे। इंस्पायर
3: आई हैव विश

0: कहीं तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो फिरकों में बट गए और खुली खुली वाज़े हिदायत पाने के बाद फिर इख्तलाफात में मुब्तला हुए। जिन्होंने ये रविश इख्तियार की वो उस रोज सख्त सजा पाएंगे। फिर इख्तलाफात में मुब्तला हुए,
1: ये इशारा उन उम्मतों की तरफ है जिन्होंने खुदा के पैगंबरों से दीन हक की साफ और सीधी तालीमात पाईं, मगर कुछ मुद्दत गुजर जाने के बाद असासी दीन को छोड़ दिया और गैर मुतालिक ज़िमनी और फ़रोई मसाइल की बुनियाद पर अलग अलग फिरके बनाने शुरू कर दिए। फिर फजूल और लायानी बातों पर झगड़ने में ऐसे मशहूल हुए कि न उन्हें उस काम का होश रहा जो अल्लाह ने उनके सुपुर्द किया था और न अकीदा व अखलाक के उन बुनियादी उसूलों से कोई दिलचस्पी रही जिन पर दरहकीकत इंसान की फलाह और सआदत का मदार है।

0: तुम तो कुरान के साथ तौरात को भी मानते हो, इसलिए उनको तुमसे शिकायत होने की कोई माकूल वजह नहीं हो सकती। अलबत्ता शिकायत अगर हो सकती थी तो तुम्हें उनसे हो सकती थी, क्योंकि वो कुरान को नहीं मानते।
1: इन तमसस्कुम हसनतुम

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock. Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
1: This is really important, Afshan, because that is the only way that because we can't see our listeners can't see us physically face to face. So this is the only way through their messages, through their calls, through their emails that they provide us feedback and ask any question that they have regarding our show, if they want any topic to be included in our further shows. Or the most important thing that I want to discuss is ke hamara hame bahut se logon ne approach kiya hai feedback dene ke liye. Agar aapki ijazat ho to main usko saath saath shamil karti jati hu.
2: Bilkul, hamare jo listeners hame regular sunte hain aur phir hame feedback dete hain, to hame unka naam aur unke jo feedbacks hain wo zarur shamil karne chahiye.
1: तो बिल्कुल सबसे पहले तो मैं अफशान ये कहूंगी कि हमें वी हैव गॉट सच अ रियली गुड फीडबैक फ्रॉम ऑल आवर लिसनर्स जिन्होंने हमें अप्रोच किया है. दे आर रियली प्रेजिंग द शो. दे से दैट द टॉपिक्स आर रिलेटेबल एंड दे रियली कैन कनेक्ट टू द शो वट एवर इट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स एंड समटाइम्स इट्स द थिंग्स आर सो रिलेटेबल इंडीड. उरूज दुरानी ने हमें पिशावर से मैसेज किया है और उन्होंने कहा है कि सुपर्ब शो, वेरी इम्प्रेसिव. कोमल मीर ने एबटाबाद से अप्रोच किया हमें और ये कह रही हैं कि योर टॉपिक्स आर वेरी रेलेवेंट टू डेली लाइफ. आई लाइक द वे यू टॉक. इट्स लवली प्रोग्राम टू वॉच. ओके, तो और हमें लिखा है खदीजा ने इस्लामाबाद से. शी सेज दैट आफ्टर लिसनिंग टू योर प्रोग्राम आई हैव मॉडिफाइड माई सेल्फ अ लॉट. आफ्टर लिसनिंग टू योर एडवाइस दैट वी हैव समटाइम्स गिवन फॉर श्योर रिगार्डिंग एनी टॉपिक, शी सेज दैट इट हैज हेल्प हर अ लॉट. And there have been so many problems in her life that have, you know, solved to a great extent now. This is the thing that we want. This is the positivity that we want to spread through our program. Ke jis tak ki awaaz ja rahi hai, jo is topic ko, is show ko sun rahe hain, unki zindagi mein agar koi bhi positive change aata hai, Afshan, to that shows के हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एक आपकी लाइफ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है.
2: बिल्कुल.
1: और दिस इज मेकिंग सम काइंड ऑफ चेंज. इट्स नॉट अ शो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ शो. इट्स मेकिंग सम चेंज इन योर लाइफ.
2: बिल्कुल. देखें, ये फैमिली शो है, ठीक है. इसमें हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं या उन चीज़ों पर बात कर रहे होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ से अटैच हैं, चाहे वो हमारे घर का प्रॉब्लम हो या घर के रिश्ते हो, रिश्तों की बात हो, बिहेवियर की बात हो, किसी भी चीज़ से मुतलक होती है, तो हम सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं. और वो शो जो आपके डे टू डे लाइफ के साथ मिलता हो या अटैच होता हो, मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं जाकर आपकी फैमिली पे या आपके ऊपर जरूर असर डालता है.
1: So we have touched another heart and she is Fatima Ijaz from Abtabad again. She says ke Inspire FM has turned everyday family matters into meaningful, thoughtful conversations. Our graceful hosting makes every discussion relatable and inspiring. Thank you so much, Fatima. That was such a compliment hearing all these kind words and nice words from you. People out there. Naila Iram ne Malaysia se hame likha hai ke she really likes the show. Unhone bhi usko suna aur usko appreciate kiya hai. Aaj ka show, Afshan, the topic is it is a very serious topic, okay, but I will try to take it along in a very casual, you can say, manner. हम इसकी सीरियसनेस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे. अंडरस्टैंडिंग टीनेज रेबेलियन, ओके, एडल्ट चिल्ड्रन एंड एजिंग पेरेंट्स, रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज, कल्चरल क्लैशेस एंड द मोस्ट सेड सेंटेंस ऑफ ऑल द टाइम्स, माई पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी.
2: अच्छा, ये जो चीज है ना टीनेज रिबेलियन, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा अंदर आए, जूते इधर फेंके, दरवाजा जोर से मारे और आपके साथ बदतमीजी करे, तो वो रिबेलियन है. ठीक है, पॉइंट जो हम पेरेंट्स मिस कर जाते हैं वो ये है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी अपनी एक शख्सियत होती है, उनकी एक पर्सनैलिटी होती है जो कि डेवलप हो रही होती है. हमारे यहाँ बात ना मानने को या आर्ग्यूमेंट करने को बागी कहा जाता है, रिबिलियस कहा जाता है, ठीक है, बदतमीज कहा जाता है. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बच्चा अपनी बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक हमारे एक टिपिकल एक सोच है कि हम माँ बाप हैं, हमें ज्यादा पता है, हम ज्यादा समझते हैं, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए उनको हमारी बातें सुननी चाहिए, मतलब हमारी माननी चाहिए.
1: बिल्कुल
2: ठीक है. और दूसरा ये होता है कि हम अक्सर बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं कि हमारी ख्वाहिशात, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स,
1: the things we couldn't achieve in our lives, we are going to ask our children to achieve those things.
2: बिल्कुल. तो बेसिकली हम उनको ना एज अ ह्यूमन बीइंग से ज्यादा एज अ ऑब्जेक्ट ले रहे होते हैं.
1: तो अफशान इसी के साथ चलते चलते 07779481822 01582481822 is the number that you can dial to connect to us, Inspire FM Luton, or www.inspirefm.org पे आप हमें सुन सकते हैं live. इसके साथ Inspire FM 105.1 से आप सुन रहे हैं The Family Matters Show. और इस टॉपिक में हम कवर क्या करने वाले हैं, व्हाई कैन द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बिकम कॉम्प्लिकेटेड इवन व्हेन देयर इज सो मच लव गोइंग ऑन, व्हाई डज अ टीनेजर सडनली बिकम अ कम्प्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, व्हाई डू पेरेंट्स समटाइम्स स्ट्रगल टू एक्सेप्ट दैट देयर चिल्ड्रन आर एडल्ट्स, एंड व्हाई डू चिल्ड्रन समटाइम्स स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड दैट देयर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर, व्हिच इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ आर शो, जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर द वंस हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम लाइक अ चाइल्ड. तो सबसे पहले अक्षरा हम बात करते हैं कि माई पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी. दिस इज समथिंग दैट वी हेयर फ्रॉम एवरी हाउस कमिंग फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड. जहाँ पे भी टीनेजर पाया जाता है वहाँ से एक इस किस्म का जुमला जरूर सुनने को मिलता है, माई पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी. एंड वाइल वी वर ग्रोइंग अप, while we were teenagers, sometimes we were sitting with our friends और हमने भी ये बात शायद कही हो कि मेरे parents तो मुझे समझते ही नहीं है, वो तो ऐसी बातें करते हैं जो मुझे समझ नहीं आती और उनको मेरी समझ नहीं आती.
2: देखिए बात ये होती है कि हर generation दूसरी generation से एक कदम आगे होती है. ठीक है, हमारा ज़माना था तो हमारी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, मीडिया नहीं था, बहुत एक्सपोजर नहीं था, हमें यही सिखाया जाता था कि जो पेरेंट्स ने कहा है वही सच है, वही ठीक है, वही सही है, उसी को फॉलो करना. आजकल एक्सपोजर है, बच्चों के पास नॉलेज है, फिंगर टिप्स पे है, मोबाइल पे है, लैपटॉप पे है, टैबलेट पे है, अगर उनको कुछ भी सर्च करना होता है वो फटाफट 2 सेकंड के अंदर गूगल करके निकाल लेते हैं. हमसे ज्यादा उनको गूगल बाजी पे भरोसा होता है क्योंकि नॉलेज है ना, उनको मिल रहा है. जब ये सब कुछ नहीं था तो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स की बात दूसरी एक चीज और जो हमारी शायद हम लोग उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं वो है कुरान में वालदैन के हुकूक. ठीक है ना, उसमें लिखा होता है कि जी बच्चों को माँ बाप के सामने उफ भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुरान में इस्लाम में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हक है. नो डाउट, हम भी माँ बाप हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, हमें भी पता है, बात ये आ जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अपने हुकूक को तो मानते हैं, हम बच्चों के हुकूक को नहीं मानते हैं.
1: और इसका एक एस्पेक्ट अफशान ये भी है कि आप ठीक है, यू आर अ पेरेंट, यू हैव ऑल द राइट्स टू यू नो पुट सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू योर एनीथिंग दैट यू थिंक दैट इज ऑफ, यू पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट. लेकिन आप अगर कहीं पे ज्यादती कर जाते हैं, देर इज सम प्लेस वेयर यू थिंक दैट यू आर डूइंग इनजस्ट टू योर चाइल्ड, तो वहां पर आप ये भी तो सोचें कि यू आर इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बी आंसरेबल टू अल्लाह.
2: बिल्कुल वही मैंने कहा ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं. हम अपने हुकूक को तो मानते हैं, हम बच्चों के हुकूक को नहीं मानते. मतलब हमारे अगर हमारे एज अ पेरेंट हमारे हुकूक हैं, तो हमारे बच्चों के भी हुकूक है ना.
1: बिल्कुल है. मैं इस चीज
2: उनकी
1: को
2: सोच भी
1: बिल्कुल
2: है, उनकी सोच भी है, उनके जज्बात भी हैं, उनके ख्यालात भी हैं, उनकी फीलिंग्स भी है. लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम ये चाहते हैं तुम ये करो, हम ये चाहते हैं तुम ये करो, क्योंकि हम चाहते हैं. हम ये नहीं सोचते कि वो बच्चा क्या चाहता है, हम ये नहीं सोचते कि उसकी क्या फीलिंग्स है. यहां पर आ जाती है बगावत.
1: और एक बात जो हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हमने भी अपनी जिंदगी के 40-50 साल गलतियां कर करके सीखा होता है.
2: बिल्कुल
1: वी ऑल्सो हैव लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर.
2: बिल्कुल.
1: ओके, बट वट वी आर ऑलवेज टेलिंग आवर चिल्ड्रन दैट वी डोंट वॉन्ट यू टू कमिट दिस मिस्टेक, वी डोंट वॉन्ट यू टू गो थ्रू ऑल दिस, वी डोंट वॉन्ट यू टू लर्न द हार्ड वे. वाई? दैट इज द पॉइंट दैट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग.
2: एग्जैक्टली.
1: हमारे पेरेंट अपने मुंह से कह रहे हैं कि ट्रायल एंड एरर से सीखा है, तो हमें ट्रायल एंड एरर नहीं करने दे रहे.
2: नहीं करने दे रहे. यही है ना, देखिए वही बात आ जाती है ना कि जब आपका बच्चा टीन एजर में आता है ना, तो वो एक एक वो कहते हैं ना कि उस दरिया की तरह होता है जो कि बिफरा हुआ होता है. तो जब दरिया बिफर जाता है, यानी उसमें आप कह लें कि फ्लड आ रहा होता है, तो आप उसके सामने गेट नहीं लगाते होते, आप वो गेट खोल देते
1: आप
2: हैं.
1: उसको रास्ता देते
2: ठीक
1: हैं,
2: है, आप उस सैलाब को रास्ता देते हैं कि वो निकल जाए,
1: डायरेक्शन देते हैं,
2: डायरेक्शंस
1: उसके
2: देते
1: लिए
2: हैं,
1: राह हमवार करते हैं,
2: हमवार करते हैं.
1: पेव
2: ये
1: द
2: नहीं
1: वे
2: होता कि
1: फॉर
2: आप
1: दैट.
2: गेट लगा के. तो जब आपका बच्चा टीन एज बनता है ना, तब उसके अंदर उसके इमोशंस, उस फिजिकली इमोशनली मेंटली हर चीज वो एक्सप्लोर कर रहा होता है. ठीक है, बहुत सारी आप अपने बच्चे को अपनी रिस्ट्रिक्शंस में रख कर भी स्पेस दे सकते हैं. ठीक है, आप उसको अपने कुरान के हवाले से, रिलीजन के हवाले से, कल्चरल के हवाले से समझा सकते हैं, और समझाना चाहिए क्योंकि ये हमारी इसका हिस्सा है तरबियत का. लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहां पे पेरेंट्स अड़ जाते हैं. नहीं, तुमने नहीं करना, तुमने नहीं जाना, तुमने नहीं बात करनी, तुमने बाहर नहीं जाना, तुमने ये नहीं करना, तुमने नहीं.
1: तो बात वही आ जाती है अफशां, हमारे बिल्कुल पहली एपिसोड की तरफ, दैट इज कम्युनिकेशन. कि आप
2: बिल्कुल.
1: इफ इफ यू आर नॉट मेकिंग योर टीनेज चाइल्ड अंडरस्टैंड वन थिंग, तो आप ये बात लिख के रख लें कि वो आपकी बात को कभी भी समझने की कोशिश नहीं करेगा.
2: हाँ
1: ठीक है.
2: बिल्कुल. अगर आप बहुत ज्यादा रोक टोक करेंगे, आप बहुत ज्यादा उसको बहुत लंबे लंबे लेक्चर देंगे ना, तो अक्सर बच्चे लंबे लेक्चर से हो जाते हैं. अब बाज़ों का तीवन क्या, मैं मतलब बात शुरू करती हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं हेयर वी गो अगेन, यानी अम्मा फिर शुरू हो जाएंगी.
1: हेयर कम्स द 10 मिनट लेक्चर.
2: हाँ,
1: और हेयर कम्स द
2: तो उस टाइम पे फिर मैं ये करती हूँ कि मैं बात बदल, मैं तो लेक्चर नहीं दे रही, मैं तो आपसे सिर्फ ये बात डिस्कस कर रही हूँ. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कसिंग एंड फोर्सिंग.
1: एग्जैक्टली. और ये लेक्चरिंग एक ऐसी चीज है कि स्पेशली चिल्ड्रन, स्पेशली टीनेजर, उससे ऐसे भागते हैं कि दे जस्ट डोंट वांट टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू लाइक अ वेजिटेबल एंड हैव अ लेक्चर फॉर होल 10 मिनट्स. ठीक है.
2: बिल्कुल.
1: दे एक्चुअली दे डोंट दे वांट टू गेट इन टू डिस्कशन. ठीक है, लेक्चरिंग वो नहीं लेना चाहते,
2: हाँ,
1: लेक्चर वो नहीं लेना चाहते. उसके साथ
2: डिस्कशन
1: आप
2: करें ना,
1: डिस्कशन करें. ठीक है,
2: डिस्कशन
1: वैलिड
2: करें,
1: पॉइंट पे. ठीक है,
2: हाँ ना.
1: तो आप उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें. दिस इज द रीजन व्हाई आई एम पुटिंग दिस रिस्ट्रिक्शन फॉर एवरीवन इन द फैमिली. इट्स नॉट ओनली यू, इट्स फॉर एवरीवन इन द फैमिली. एंड वी आर गोइंग टू गो एग्जैक्टली द सेम वे व्हेन योर सिबलिंग्स आर गोइंग टू टर्न इनटू द टीनेजर. तो इसमें आप उनको हर चीज क्लियर करें कि ये रीजन है. हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस हम एरिया में रह रहे हैं, जिस लोकेशन में रह रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, उसकी बातें आप उनको रिलेट करके बताएं.
2: देखिए, जब बच्चा आता है ना आपसे बात करता है, तो जरूरी नहीं कि आप उसी वक्त उसको जवाब दें, ठीक है? कभी कभी बच्चे की बात सुन के थोड़ी देर की खामोशी बेहतर होती है, क्योंकि बच्चे को ये रियलाइज होता है कि जब आप उसकी बात सुने। अच्छा, दूसरी बात एक और, जब बच्चा आपसे बात करे ना तो उसको पूरी कंसंट्रेशन दें।
1: बिल्कुल
2: आजकल अनफॉर्चुनेटली बच्चा बात कर रहा होता है, हम मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, टैबलेट पे होते हैं, किसी को मैसेज कर रहे होते हैं, और हम अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ मैंने सुन लिया।
1: तो ये अब देखें, बात वही है कि अफशां उस चीज को आप अपने ऊपर अगर वो सिचुएशन में अपने आप को डाल के देखें, तो विल यू बी रियली हैप्पी कि अगर आप आपका कोई पार्टनर या आपका कोई घर का बड़ा आपसे इस तरीके से बात कर रहा होगे व्हाइल यू आर टॉकिंग एंड दे आर जस्ट बिजी ऑन द टीवी और ऑन देयर फोन, यू वोंट लाइक इट एट ऑल, ठीक
2: तो
1: है?
2: यही चीज आ जाती है ना फिर, कि
1: जस्ट
2: वो दे डोंट अंडरस्टैंड मी, आपने तवज्जो नहीं दी ना उसकी बात पे।
1: बिल्कुल, और आप यू आर नॉट लिस्निंग टू व्हाट दे वर सेइंग, यू डिडंट लिसन टू देयर कंसर्न, और आपने एंड की बात या शुरू की बात एक पिक करके उसके ऊपर एक हुक्म सादर कर दिया कि ऐसा तो नहीं हो सकता,
2: बिल्कुल
1: ठीक है? तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे रीजंस क्या हैं? आपने अपने बच्चे की पूरी बात सुनी, आधी सुनी, नहीं सुनी, वर यू बिजी विद योर ओन थिंग दैट वाज गोइंग ऑन? तो आपने उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी कहाँ पे शो की है, कहाँ पे आपने अपना फुल 100% दिया
2: कनेक्शन शो
1: है,
2: करे ना।
1: कहाँ पे आपने कनेक्शन शो किया है कि आप दैट लेड यू टू रिजोल्व दैट होल थिंग, ठीक
2: तो
1: है?
2: वही आप बच्चे की, आपने बात सुन ली, ठीक है, अगर आप खुद भी इस चीज को प्रोसेस करना चाहते हैं अपने माइंड में, आप ये फैसला करना चाहते हैं कि मैं इससे क्या बात करूं, क्या ना करूं, कैसे समझाऊं, तो बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम ले। आप ये भी कह सकते हैं, अच्छा बेटा मैंने आपकी बात सुन ली है, चलो ठीक है अभी बैठ कर डिस्कशन करते हैं।
1: लेट्स वर्क इट आउट,
2: हाँ
1: लेट्स
2: चलो
1: टॉक
2: डिस्कशन,
1: ओवर इट।
2: ये कहना कि नहीं तुम ये नहीं करोगे या इट्स नॉट राइट, क्योंकि अगर आप जब उसी वक्त फैसला दे देते हैं ना, उसी वक्त आप उसका वो दे देते, फाइनलाइज कर लेते हैं, तो बच्चा भी इरिटेट हो जाता है कि बात तो अभी सुनी नहीं, समझी नहीं, और इन्होंने पहले से ही मुझे वो कर दिया कि नहीं तुम नहीं करोगे। अच्छा दूसरी बात, हमारे यहाँ ना एक एक और चीज भी है, वो ये है कि अगर माँ डॉक्टर बनना चाहती है तो बच्चे को प्रेशराइज करती है तुम डॉक्टर बनो, बच्चे का मूड हो ना हो, पढ़ता है नहीं पढ़ता, नहीं डॉक्टर बनना है, क्यों? मेरी ख्वाहिश थी, एक माँ की ख्वाहिश, एक खानदान का प्रेशर कि नहीं लोग क्या कहेंगे कि इसका बच्चा डॉक्टर नहीं बना तो इसने बच्चे को क्या पढ़ाया। वो एक स्टेटस सिंबल भी है ना बेसिकली, मुझे तो लगता यही है कि डॉक्टर बनना बच्चे से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल है। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को हर चीज के साथ साथ बच्चों की इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना, वो करना क्या चाहते हैं,
1: वो जैसे
2: वो
1: आपने
2: बनना क्या चाहते
1: पहले
2: हैं।
1: कहा कि डोंट मेक योर चिल्ड्रन एन ऑब्जेक्ट, डोंट मेक देम एज अ सब्जेक्ट, ठीक है? उनके ऊपर ट्रायल्स ना करें, उनके
2: हाँ
1: ऊपर
2: बिल्कुल
1: उनके उनके साथ आप उनको ऐसी सिचुएशन में मत डालें कि वो फैसला करने के काबिल ही ना रहें,
2: बिल्कुल,
1: ठीक
2: देखिए
1: है?
2: बच्चों के साथ जब हम डिस्कशन करते हैं, आप यकीन करें आजकल के बच्चे नॉलेज में बहुत अच्छे हैं, ठीक है हम उनके पेरेंट्स हैं, हमें ज्यादा दुनिया देखी हुई है, लेकिन अगर आपका बच्चा कोई वो बात कर रहा है कि जो सही है, जो उसको समझ आ रही है, तो फिर उस वक्त सिर्फ ये जिद करना कि नहीं मेरी बात सुने क्योंकि मैं माँ बाप हूँ, ठीक है वो जिंदगी के हर फैसले में आ सकती है, वो एजुकेशन में आ सकता है, वो ड्राइविंग गाड़ी लेने की जब डिसीजन आता है वो तब हो सकती है, वो मोबाइल के फोन की डिसीजन भी हो सकती है, तो बजाय इसके कि ना करने के उनके प्रोज एंड कॉन्स उनको समझाए ना।
1: द डिसीजंस आर अबाउट एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, और आगे जब उन्होंने व्हेन दे आर गोइंग टू चूज देयर लाइफ पार्टनर टू स्पेंड देयर लाइफ विद, तो इस जो आपने भी बात की उसके दो एस्पेक्ट हम देखते हैं कि समटाइम्स द चिल्ड्रन आर थिंकिंग दैट माई पेरेंट्स आर गेटिंग कंट्रोल ऑफ मी, स्पेशली व्हेन दे आर अ टीनेजर और अबव, एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो थिंकिंग के ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये बाकी लोगों पर तो नहीं लगी हुई, ठीक है? मेरे घर में ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, माय फ्रेंड इज अलाउड टू डू दिस, माय फ्रेंड इज अलाउड टू डू दैट, और माय फ्रेंड कैन वेयर दिस, माय फ्रेंड कैन वेयर दैट, आई एम नॉट अलाउड टू डू दिस एंड आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट, व्हाई इज दैट? सो ये हमारे सामने सिचुएशंस तब आती हैं जब वी आर लिविंग इन अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी स्पेशली, और जब वी एज इमिग्रेंट्स व्हेन वी आर लिविंग इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, और हमें यहाँ पर आकर क्योंकि अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना है, उनको कॉलेज भी भेजना है, उनको काम पे भी भेजना है, तो हमारे सामने ये सीन्स आते हैं और आपके सामने भी यकीनन ये सिचुएशन क्रिएट की हुई होगी, तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
2: देखिए, जब आप दूसरे मुल्क आते हैं ना, तो आप अपने वैल्यूज को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने कल्चर को बचाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और डेफिनेटली बच्चे स्कूल जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ चीजें देखते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उसके लिए होता है कि आप शुरू से अपने बच्चे को सही और गलत बताते हैं, आप शुरू से उनको अपने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं और उन डिफरेंट रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, जैसे आप कपड़ों की बात कर लें, ठीक है, इस्लाम आपको एक मॉडेस्ट क्लोजिंग का हुक्म देता है, एक पर्दे का, एक ढके छुपे होने का हुक्म देता है। तो आजकल तो अगर आप नोट करें तो बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो बच्चियां स्कूल कॉलेजेस में पहन सकती हैं, वो मॉडेस्ट भी होते हैं, कवर्ड भी होते हैं, और जो है तो वो डे टू डे लाइफ के साथ चलते भी हैं। तो बजाय इसके कि आप उनको बिल्कुल ही फोर्स करके कि नहीं तुमने इनमें से ये भी नहीं पहना, ये भी नहीं पहना, ये भी नहीं पहना, ठीक है, आप उस चीज को थोड़ा सा इस तरह से मैनेज करें कि उनको भी आजादी रहे और वो बिल्कुल आउटकास्ट भी ना फील करें अपना, और बिल्कुल ही लेफ्ट आउट भी ना हो, और बिल्कुल मतलब उन जैसे भी ना बन जाए। बिल्कुल हो सकता है
1: आप, क्योंकि देखिए ना, सबसे पहले तो एक इतनी बड़ी लाइफ की चेंज आप खुद अपनी फैमिली में लेकर आए हैं व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर।
2: बिल्कुल,
1: दैट इज अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर एवरीवन इन द फैमिली।
2: फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि आपके बच्चे उस डगर पे चले जिस डगर पे आप लोग चले। जाहिरी बात है जब आप दूसरे मुल्क में रहते हैं, वहां का कल्चर बच्चे देखते हैं, वहां की चीजें देखते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, उनको आंसर्स भी चाहिए होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत दफा ये देखा है कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं, बच्चियां घर से तो निकाब करके अबाया पहन के निकलती हैं, लेकिन बाहर आती हैं, मॉल में आती हैं या कहीं जाती हैं, तो फिर वो अपना हिजाब या अपना बुर्का उतार देती हैं। वो इसलिए कि घर से
1: exactly things were not talked through,
2: बिल्कुल
1: things were left, you know they didn't have a closure, उनको उनको अपनी discussion का closure नहीं मिला,
2: नहीं मिला
1: अपनी, जो उन्होंने एक बात raise की अपने parents के सामने तो उनको जो है चुप करा दिया गया, that you are not in the place to talk to your parents or you are not in the place to discuss these things with us, the whatever we are saying is the last word।
2: मेरे ख्याल में ये माओं की ज्यादा जिम्मेदारी आती है, क्योंकि बच्चियों को वो ज्यादा इन चीजों में गाइड एक माँ बेहतर तौर पे कर सकती है। दूसरी बात है कि यहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं आपके पास, अगर मल्टी कल्चरल आप मल्टी फेथ एक कंट्री में रह रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट जाहिर बात है कल्चर फेथ के लोग होंगे। अब देखिए बास ड्रेसिंग के हिसाब से कर लें, ठीक है, या आने जाने के पार्टी होने के हिसाब से कर लें, दोस्ती के हिसाब से कर लें, तो हर चीज हम एज अ मुस्लिम हमारी उनसे डिफरेंट है, हमारे हर चीज उनसे अलग है। तो आप बच्चों को अगर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए ये चीजें समझा सकें कि भाई देखो ये उनका रिलीजन है, ये उनका कल्चर है, ये उनके वैल्यूज है, हमारे नहीं है।
1: बिल्कुल अफशा, मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन वी गो बैक टू आवर टीनेज टाइम, तो उस वक्त लगता था कि पेरेंट्स हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं, और अब जब हम खुद पेरेंट्स हैं, ठीक है, और अब हमारे पास टीनेजर बच्चे हैं, या हम अपने आसपास स्कूल्स कॉलेजेस में टीनेज बच्चों को देखते हैं और उनको वैसे ही स्टबर्न बिहेवियर के साथ या एक लाउड किस्म के बिहेवियर के साथ हम जब देखते हैं, तो हमें अपना टीनेज का जमाना याद आता है और हम वी कैन रिलेट इट वेरी वेल विद देम कि वो इस वजह से ये क्या ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी बात सुनी नहीं गई। हमें भी लगता है कि उस वक्त हमारी बात अगर प्रॉपर्ली सुनी जाती तो हम शायद हमारा ये एक पर्सनैलिटी का जो खला रह गया है वो शायद ऐसा ना होता, ठीक है। दिस इज वॉट आई थिंक, Maybe you won't agree with me, but this is what I always think कि अगर उस वक्त ये situation ऐसी ना होती तो मेरी personality शायद थोड़ी सी different होती।
2: असल में हम उस मकाम पे आ गए हैं ना कि जहां पे हम माओं के जज्बात भी अब समझ रहे हैं कि हमारी जब अम्मियां ये बात करती थी तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करती थी, और हम उस बात को भी समझने की वो करते जो हमारे बच्चे हमसे कह रहे हैं, या हम उस फेज से गुजर चुके हैं हम उस। अब मैं अक्सर अपने बच्चों से कहती हूँ कि बेटा जो चीज तुम आज कह रहे हो ना, ये किसी जमाने में हम अपनी माओं को कहा करते थे।
1: लेकिन उसके साथ साथ आई ऑलवेज टेल दिस थिंग टू माई चिल्ड्रन दैट यू गाइज आर सो लकी के वी अंडरस्टैंड यू गाइज, ठीक है,
2: मोर देन आई,
1: we understand where you are coming from and we were not understood as much as you guys are being understood.
2: बिल्कुल, देखिए आजकल डिस्कशन होती है, कम्युनिकेशन है, आजकल पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के बाकायदा बातचीत करते हैं कि ये बात करनी है तो ऐसे करनी है तो वैसे करनी है। अब अगर आपके पास बच्चा आता है कहता है मैंने गाड़ी खरीदनी, आप कहते हैं नहीं तुम ये नहीं खरीदोगे तुम वो खरीदोगे, ठीक है तुम ये नहीं लोगे तो वो लोगे, ठीक है। अब बच्चे की आप पहले उसकी बात सुने, हाँ एकदम से मना करने की बजाय आप उनके साथ बैठ कर डिस्कशन करें, उनके साथ पूछे भाई वो गाड़ी क्यों लेना चाह रहा है, वो ये उस इसमें ऐसी क्या खास बात है।
1: ओके अफशा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक, प्लीज लिसनर्स डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस ऑन इंस्पायर एफएम 105.1. Revisit your relationship with your teenager boy or girl and see where you are lacking some communication. We are going to come back after a very short break.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: فتوكل على الحي الذي لا يموت. As Allah says, depend on Allah, depend on Allah, the one that lives and never dies.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. What is the matter with you when a single disaster smites you? Although you smote your enemies with one twice as great, you say, from where does this come to us? Say to them, it is from yourselves because of your evil deeds, and Allah has power over all things.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 0300123774 court.org.uk।
10: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30. Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.

0: अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द फैमिली मैटर्स शो, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू बिल्ड योर रिलेशनशिप विद योर टीनेजर चिल्ड्रन. ब्रेक पे जाने से पहले आई जस्ट आस्क यू टू रिविजिट योर रिलेशनशिप विद योर टीनेजर. आई होप दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इफ यू रियलाइज वेयर इज द इंफॉर्मेशन गैप कमिंग on, and then how you, why your teenager is behaving in a certain way, or how are you reacting to their questions and requests in a certain way. Adult children and aging parents, this is a very heart touching kind of topic that while I was searching around for the material and everything. So this is something really that has touched my heart. Adult children and aging parents.
1: अच्छा, जिस तरह के जब जैसे से बच्चा बड़ा होता है, चूंकि उसके ख्यालात चेंज होते हैं, उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसकी सोच बदल रही होती, वो ज्यादा से ज्यादा फैसले खुद करना चाहता है. लाइक He wants to have the control of decisions that he's making. अब उस वक्त इधर हम भी आगे बढ़ रहे होते हैं, इधर वो भी आगे बढ़ रहा होता है, तो क्लैश लाजमी होता है. मेरे ख्याल में as a parent हमें
0: जी अफशां, we were talking about adult children and aging parents, के हम बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, parents भी age कर रहे होते हैं, and there is a time when parents are they are weak as toddlers, they are weak as children, small children. तो उस वक्त बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस वक्त भी parents परेशान होते हैं कि okay, you are even a grown up now, but you are going out, take a jacket, don't drive too fast, have you eaten your food, message me when you get there. And the children are just, they sometimes they don't like it at all.
1: अच्छा, मैं वही बात है ना, जब आप बहुत ज्यादा बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करने लगते हैं ना, तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं. ठीक है, बच्चों को ये समझाना कि बेटा हम तुम्हारी फिक्र करते हैं, हम तुमसे पे पूरा भरोसा करते हैं, हमें औरों पे भरोसा नहीं है, हम तुम्हें इसलिए नहीं कहते कि एहतियात से चलाओ कि तुम डेंजरस हो, हम तुम्हें इसलिए कहते हैं कि बेटा एहतियात से चलाओ ताकि तुम विजिलेंट रहो. तुम तो एहतियात से चलाओगे, दूसरा तो शायद ना चला रहा हो ना. तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होता कि हम तुम पे ट्रस्ट नहीं करते, हम तुम पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हम दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. तो हमारा बार बार ये कहना कि बेटा जरा एहतियात से गाड़ी चलाना, इट्स नॉट अबाउट यू. ठीक है, हमें पता है तुम कैसे ड्राइव करते, यू आर गुड ड्राइवर, यू नो द लॉ, यू नो द लिमिट्स, यू नो एवरीथिंग, बट समटाइम्स एक छोटी सी आपकी जो होती है ना डाइवर्जन, वो कुछ ना कुछ काम कर सकती है.
0: मदरली नेचर वोंट चेंज एंड द फादरली नेचर वोंट एवर चेंज. देखो, बट द थिंग इज के देयर शुड बी अ लिमिट.
1: बिल्कुल,
0: जैसे आपने कहा,
1: बिल्कुल,
0: देयर शुड बी अ लिमिट. डोंट इम्पोज एवरीथिंग टू मच ऑन देम, कि वो आपसे भागना शुरू कर दे, तो उनका गैप जो है ना वो वाइडर होता जाए. वी डोंट वांट दैट.
1: हाँ, देखो, घर जो होता है ना, घर आपका एक कंफर्ट जोन होता है, उसको वॉर जोन बनाने की जरूरत नहीं है, उसको कंफर्ट जोन ही रहने दें. बच्चा बाहर से आए तो उसको लगे कि हाँ यार, ये मेरा घर है, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ सुकून है, इत्मीनान है, यहाँ पे जो लोग हैं वो मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी केयर करते हैं. लेकिन वो केयर, देखिये, कभी कभी बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है ना, वो भी सफोकेशन हो जाती है. ठीक है, हम पेरेंट्स हैं, हम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी यही मोहब्बत जो है ना, बच्चों के लिए एक फंदा बनने शुरू हो जाती है. क्योंकि हम ओवर ऑब्सेस्ड होते हैं उनकी केयर के लिए,
0: ओवर पोसेसिव हो जाते हैं
1: बहुत ज्यादा ना,
0: हो जाते हैं,
1: तो ये चीज पर आके उनको तंग करती है. तो मेरे ख्याल में बेशक आप घबराते हैं, आप परेशान होते हैं, माए हैं, मैं खुद अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान होती हूँ, लेकिन जाहिर बात है, लेकिन जब ये भी है कि उसकी भी जिंदगी है, ठीक है, वो बेबी तो है नहीं कि हमारा दिल चाहा तो फीडर पिला के सुला दिया, पकड़ के कॉट में डाल दिया, दरवाजा कवर कर दिया कि नहीं बस सब सो जाओ, दिस इज योर स्लीपिंग टाइम, ऐसा नहीं हो सकता. उसकी अपनी एक जिंदगी है, उसकी एक लाइफ है, उसके दोस्त होंगे, कहीं आएगा जाएगा. दूसरी बात ये कि बेटा हो या बेटी हो, उनको इतनी आजादी जरूर दें कि वो बाहर निकलें, आजकल की दुनिया को देखें, आजकल की दुनिया के साथ चलना सीखें, क्योंकि अब ये वो वक्त नहीं है जहां पे हम अपने बच्चों को एक घर के सर्कल में बंद करके रखें, एक प्रोटेक्टिव बबल में उनको रखें.
0: और देखें, एक रियलिस्टिक सी बात है अफशा, कि वी आर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, वी एज पेरेंट्स एंड आवर चिल्ड्रन, वी आर living with a very different, with a very opposite mindset.
1: बिल्कुल.
0: उन्होंने स्कूल जाना है, उन्होंने कॉलेज जाना है, उन्होंने काम पे जाना है, they have their friends over there, उनके साथ उनकी अलहदा से एक कंपनी होती है,
1: गपशप
0: होती है, उनके आपस के जोक्स होते हैं, ठीक है, और हमारे एज अ पेरेंट्स वी आर गेटिंग अप विद अ वेरी डिफरेंट माइंड सेट. हमने सुबह उठ के घर को भी देखना है, हमने जॉब्स को भी मैनेज करना है, हमने बच्चों की फिक्र भी करनी है, हमने एक्सटेंडेड फैमिली की फिक्र भी करनी है, ठीक है, हमने घर को भी मैनेज करना है ए टू जी, ठीक है. तो बच्चों के पास शायद फॉर द टाइम बीइंग घर को संभालने की फिक्र नहीं है. वो दे सम ऑफ द चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग देयर केयर फ्री लाइफ, ठीक है, तो उसमें उनके उनके पास घर की जिम्मेदारी जो है ना वो कहीं नीचे चली जाती है, और हमारे पास घर की जिम्मेदारी क्योंकि बिल्कुल टॉप पे होती है. तो हमें लगता है कि द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू डू.
1: बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है ना.
0: तो आप वो थोड़ा सा आइडिया लेकर आए अपने माइंड में, आप थोड़ा सा उस चीज को सोचने की कोशिश करें कि दे आर लिविंग अ केयर फ्री लाइफ. आई एम टॉकिंग अबाउट अ टीनेजर, ठीक है.
1: टीनेजर तो वो तो शुरशुरी होती है ना, फायरवर्क होता है, कभी इधर फटता है, कभी इधर फटता है ना, आप उसको बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना. तो आपको उसको साथ लेके चलना पड़ता है, उसको थोड़ा काम डाउन करना पड़ता है,
0: उसको दे नीड सम एनकरेजमेंट, दे नीड सम श्योरिटी के यस द पेरेंट्स आर विद देम, द पेरेंट्स अंडरस्टैंड देम, द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन आर ऑन द सेम पेज, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, you know, talking about any contemporary kind of book ya comic ki baat kar rahe hain ya kisi show ki baat kar rahe hain, kisi game show ki baat kar rahe hain, kisi music ki baat kar rahe hain, to agar aapko samajh nahi bhi aata to aap thoda sa interest zarur show kare ke usse they feel a connect, so that they feel a connection.
1: पता है क्या, उनके ना अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है. वो इधर से दोस्तों से भी एडवाइस ले रहे होते हैं जो डेफिनेटली उन्हीं के दोस्त होते हैं, उन्हीं जैसे ही होते हैं, वो भी बच्चे, ये भी बच्चे, जो कुछ वहां से सुन के आते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, फिर मीडिया से चीजें उठा रहे होते हैं, यूट्यूब से, इधर उधर से, तो उनके दिमाग में ना खिचड़ी पक रही होती है, वो खुद कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनके उनके पास कोई क्लियर पाथ नहीं होता. एज अ पेरेंट अगर आप भी उस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे या आप बहस करेंगे या आप खामखा की जिद पर खड़े हो जाएंगे तो वो बच्चा हमेशा बागी होता है. जब तक कि आप उनका माइंड क्लियर नहीं करें, उनके सवाल को समझें, पहले सुने और फिर समझें और फिर उसको रिप्लाई करें. अगर वो कहीं जाने का कह रहा है तो ये नहीं कहें कि फौरन जाओ, या ये भी मत कहें कि मत जाओ. आप पहले ये पता करें कि जहां वो जा रहा है वो जगह कैसी है, वहां दोस्त कौन है, उन दोस्तों में से कितने लोगों को आप जानते हैं. आप कहें ठीक है बेटा,

0: पहले जमाने में जब एक जनरेशन हम पीछे चले जाते हैं तो हमारा एक एक मेन मकसद होता था कि हम हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स की खिदमत की, उनको संभाला. और ये हम एशियन कल्चर्स में देखते हैं, अरब कल्चर में देखते हैं, मोस्ट ऑफ द कल्चर्स में ये चीज़ होती है कि जब आपके पेरेंट्स एज हो जाते हैं तो आप घर के जो यंगर लॉट होती है वो उनका टेक केयर करती है, वो उनको संभालती है, वो उनको दे फीड देम, दे मूव मूव देम अराउंड, दे गिव देम कंपनी. ठीक है, तो अभी जैसे हर चीज़ चेंज हो रही है, हर सिनेरियो चेंज हो रहा है, जॉब्स की प्रॉब्लम्स हैं, दे हैव टू यू नो बाज़ दफ़ा उनको दो दो जॉब्स करनी पड़ती हैं बच्चों को टू, और बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग. उसमें जो एजिंग पेरेंट्स हैं, ठीक है, और कुछ कुछ सिनेरियोज में तो ये होता है कि वो एक तो आते साथ ही कहते हैं कि जी हम तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यूक्लियर फैमिली, वी आर नॉट लिविंग इन द एक्सटेंडेड फैमिली. और अगर वो एक्सटेंडेड फैमिली में रह भी रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रह भी रहे हैं, तो पेरेंट्स आर जस्ट सिटिंग अलोन विदाउट एनी यू नो कंपनी. आई वुडन्ट से केयर, बट कंपनी फॉर द होल डे लॉन्ग. उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? मुझे मेरे मेरी ये ओपिनियन है और मेरा ये जो है ना एक्सपीरियंस है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को फुल टाइम 24/7 365 अगर लुक आफ्टर नहीं कर सकते, आपके पास जॉब का प्रेशर है, आपके पास अपनी फैमिली का प्रेशर है, तो आस्क फॉर सपोर्ट.
1: देखिए, बात यह आती है कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें, ठीक है, उसमें तो ये पेरेंट्स के ऊपर है ना कि वो अपने बच्चों की रूटीन शादी के बाद किस तरह से बनाते हैं। देखिए, एक चीज होती है आपने बच्चों को फ्री हैंड दे दिया, एक चीज होती है आपने बच्चों को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया, और एक चीज होती है कि आप जब बच्चों की शादी होती है, स्पेशली बहू घर में आती है, तो आप उनको स्पेस देते हैं, लेकिन स्पेस के साथ साथ आप कुछ बाउंड्रीज भी बनाने लगते हैं। अब मैं जानती हूं कुछ ऐसी फैमिलीज को जिनकी घर का सिस्टम अब बहुत उलझा हुआ है, कोई इधर शोर मचा रहा है, कोई उधर शोर मचा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। पेरेंट्स, वही आप वाली बात कि वो अकेले बैठे हैं तो सारा दिन बैठे रहे हुए हैं कि कोई भी पूछने को नहीं आ रहा, फिर कंप्लेन्स हैं कि भाई हमारे बच्चे हमें वक्त नहीं देते। और फिर मैंने वो फैमिलीज भी देखी हैं जिनका एक बाकायदा एक सेटअप है कि वीकेंड पे वो लोग सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, और वीकेंड का एक दिन सैटरडे या संडे वो फैमिली इकट्ठी गुजारती है, बाकी सारा हफ्ता एवरीबडी इज बिजी। तो ये तो आपके ऊपर है, ठीक है, जो एजिंग पेरेंट्स हैं कि जब वो बच्चों की शादियां करते हैं तो वो घर में क्या सेटअप कैसे चलाते हैं। देखिए, अगर आप हर वक्त बच्चों की बहू बेटे की लाइफ में घुसेंगे तब तो यू आर अ बैड पेरेंट, वो तो डेफिनेटली आपसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सेटअप ऐसा बनाते हैं कि बाकी पूरा हफ्ता वो जो करते हैं करते रहें, ठीक है, उनकी अपनी लाइफ है, अपनी जॉब्स हैं, अपनी जिंदगी है, अपना आना जाना है, और वीकेंड पे आप लंच डिनर या ब्रेकफास्ट अगर एज अ फैमिली होल मिलके करते हैं, दिन का हफ्ते का एक ही दिन होता है, उसमें गपशप भी हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है, मिलके भी बैठ जाते हैं, तो बच्चों को भी आसानी होती है कि वो बाउंड नहीं होते, और पेरेंट्स को भी आसानी होती है वो शायद इस चीज से। और अच्छा, ऐसी सूरत में ना बच्चे नेचुरली माँ बाप का हाल पूछते हैं, वो वैसे ही कहते हैं अच्छा चलो यार, वो फिर आपका ख्याल रखते हैं। क्यों?
0: दे
1: क्योंकि
0: स्टॉप फीलिंग इट एज अ बर्डन.
1: हाँ,
0: उनको ये नहीं लग रहा होता कि कोई चीज हमें
1: कुछ हमारे
0: प्रेशराइज
1: ऊपर है,
0: करेगी.
1: उनको ये लग रहा होता है एक दिन है ना, एक दिन है, सिर्फ सैटरडे है या सिर्फ संडे है, नाश्ता करना है, खाना खाना है, थोड़ी देर बैठना है, अम्मी अबू का हाल पूछना है, और उसके बाद हम लोग की अपनी जिंदगी, क्योंकि पूरा वीक आपने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है ना, लेकिन एक दिन आपने शुरू दिन से ही एक दिन रखा है। जब आप बच्चों की शादी तब से आप कहते हैं ठीक है बेटा, सारी जिंदगी तुम्हारी ये वीकेंड पे हम इकट्ठा नाश्ता करेंगे, हम इकट्ठा खाना खाएंगे, हम दिन भर बात करेंगे। दैट इज हाउ यू डू थिंग्स।
0: तो आप की बात से ये हम रिजल्ट निकालते हैं कि रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज गो साइड बाय साइड
1: बिल्कुल
0: आपके पेरेंट्स के साथ व्हेन यू ग्रो अप. ठीक है, व्हेन यू हैव अ फैमिली ऑफ योर ओन और आपके पेरेंट्स

0: کہ جہاں اب تک تیری ہے لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں. شو میں اس کا نام ہے بول کھلا اب آزاد ہیں تیرے, ہم ہیں آزاد, آپ ہیں آزاد, لب ہیں آزاد, اور آج ریڈیو کا شو ہونے والا ہے جی. بڑے دنوں کے بعد جب کبھی کبھی دل سے ایک آہ اٹھتی ہے نا, دل سے ایک ہوک سے بھی اٹھتی ہے کبھی کبھی, اسی طرح دل چاہتا ہے کچھ کرنے کا, تو آج کا یہ شو آپ لوگوں کے نام کرتے ہیں جی, ریڈیو آزاد کے لسنرز کے نام کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں, آج موڈ اچھا ہے, اندر کا موسم اچھا ہے, ماحول اچھا ہے, تو کوشش کریں گے آج آپ کو ایک فن لسنرز آزاد شو, جس میں تمام انگریڈینٹس, تمام مسالے, 12 مسالوں کی چاٹ نہیں ہوتی تھی ایک اور وہ نہاری میں جب سارے مسالے پورے ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کھانا کھا کے اس میں کچھ کمی ہے آج, تو وہ والا دن نہیں رہے گا آج. آج ہم لوگ آپ کو خوبصورت کانٹریبیوشن بھی لیں گے. آج ایکچولی میرا پلان یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے شو بڑے دنوں کے بعد بیٹھ کے میں کچھ لکھوں آپ لوگوں کے لیے اور وہ پیش کیا جائے. بہت لوگوں کی فرمائش تھی کہ جو 10 days آف سائلنس اینڈ سالیٹیوڈ ہم نے منائے رمضان کے آخری عشرے میں, اس کے بارے میں کچھ میں نے کہا تھا کہ اس میں بہت ساری ایک تو پرانا رن آف دا مل کائنڈ آف کانسیپٹ ہوتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں, اور سارے کام شام چھوڑ کے اب نئے زمانے میں فون اور باقی چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اعتکاف ہو گیا تھا, لیکن یہ اس میں ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, مینٹلی, فزیکلی, اسپرچولی, اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن اس کے کچھ کام تو میں نے ان دنوں میں کیے, کچھ میں ان دنوں کے گزرنے کے بعد کر رہا ہوں, کچھ کے ریزلٹس آ رہے ہیں, کچھ میں ہم بری طرح مزریبلی فیل ہو رہے ہیں, تو اسی لیے میں نے اس کو 3-4 دن کا اور دیا ہے تاکہ میں اور اس کی پریکٹس کر کے چیزوں کو پکا کر سکوں, اور انشاءاللہ پھر جب وہ نکلے گا دل و جان سے تو پھر آپ کے دل اور جان دونوں تک پہنچے گا, پھر آپ کہہ سکیں گے کسی کا بھائی کسی کی جان. ورنہ اگر نہیں اس طرح بیٹھا جہاں بیٹھنا چاہیے تو پھر آپ نے ایسے میری طرف دیکھ کے کہنے او کس کا بھائی کس کی جان, تو یہ ہم نہیں چاہتے جب ہم ایک کام کرنے آئے ہیں نا. سلمان خان صاحب کو پچھلی فلم میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا تو انہوں نے سیریس نہیں لیا, تو اب سکندر میں نا ان کا مقدر جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے جی. ٹھیک ہے, ایمپوران اور باقی جتنی بھی ایمپورانے اور باقی جتنی فلمیں وہ بہت اچھی جا رہی ہیں, وہ ایک ہی طرح کا کام کرتے کرتے چیزیں تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, تو اس کے لیے ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی والی جو سچویشن ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہ آئے. صبح شام جو ہم سبق پڑھاتے رہتے ہیں وہی ہم خود نہ پکا کر سکیں, تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ شو شروع کرتے ہیں جی. آپ کے لیے 972-501-9390 از دا نمبر فار دا اسٹوڈیو, کیونکہ چینج, خان جی کیا کہتے تھے, نتھنگ از پرماننٹ بٹ دا چینج. پتر بالکل اسی طرح میرے کانوں میں آج بھی ان کی وہ آواز گونجتی ہے جب ہسپتال میں تھے, وہ تھوڑا سا آپریشن ہوا ہوا تھا ان کا اور ڈھیلے ہوئے تھے تھوڑے سے, اور ان کو لگتا تھا کہ وہ جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے ان کے, تو تھوڑا سا امنگ بھی تھی, تھوڑا سا ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ کیا غلط ہوا کیا صحیح ہوا, کہاں چیزیں بہتر کی جا سکتی تھی, کہاں کیلکولیٹڈ رسک لیا جا سکتا تھا. اور اس کے بیچ میں ان کے وہ دو انگلش کے جملے مجھے آج تک یاد ہیں, ایک نتھنگ از پرماننٹ بٹ دا چینج پتر, اور دوسرا تھا چینج از دا اسپائس آف لائف. میں نے کہا واہ ہاں جی بڑی کمال باتیں, اور یہ ان دنوں میں پہلی دفعہ باپ بیٹے کے بیچ میں یہ باتیں ہوئی تھیں, ورنہ اس سے پہلے پٹھانوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہوتیں, بلکہ سلام دعا بھی ایسی کی جاتی ہے جیسے احسان کیا جا رہا ہو یا کہیں ہم آپے سے باہر نہ ہو جائیں اور ان کی سن کے ان کے سسٹم کے مطابق چلیں, وچ آئی آلریڈی آلویز ڈیڈ. لیکن پھر چیزیں ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ, تو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے, لیکن اسی طرح پھر آہستہ آہستہ چیزیں رنگ میں بھنگ پڑنے سے بہتر ہے کہ رنگ کو الگ کر دیا جائے, بھنگ کو الگ کر دیا جائے. جب بھنگ کی ضرورت ہو تب استعمال کی جائے, جب رنگ کی ضرورت ہو تب استعمال کیا جائے, دونوں کو مکس نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, ورنہ ساوی سی بن جاتی ہے, اور ساوی جس کو چڑھ جاتی ہے پھر وہ ہر اس کو ہر چیز ساوی ساوی نظر آتی ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ کیا تھا صابن کا جو پگلا ہے نا, اس کو بھی سب کچھ ہرا ہرا نظر آتا ہے. 972-501-9390 آج کا یہ خوبصورت شو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اٹس اے فن ریڈیو آزاد کا لسنر شو ہے جناب. آزاد لس کو ہم کہتے ہیں اے فن لسنرز آزاد شو, میں فن بھی ہونا چاہیے, ون آف بھی ہے آگے تو اوکے, ون آف اے کائنڈ ہونا چاہیے, فن ہونا چاہیے, لسنرز اپنا کانٹریبیوٹ کریں, آزاد صاحب اپنا کانٹریبیوٹ کریں. آزادی یہاں پر دونوں کے لیے, میرے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے بھی ہے, खुल के हम बात कर सकें। इससे पहले कि हम आगे जाएं और चेंज की तरफ आएं, हम आपको ये बताते चलें, वो लोग जो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, डिफरेंट कंट्री से हमें कॉल करते हैं जी, उन लोगों के लिए हम बताएं रेडियो आज़ाद का व्हाट्सएप नंबर, जो स्टूडियो का नंबर आप लोगों के लिए आसानी के लिए रखा है, वो चेंज हो चुका है जनाब। ये मतलब इसका ये नहीं था कि नंबर मनहूस था और कम कॉल आती थी, ऐसा नहीं है, कुछ भी कुछ भी मनहूस नहीं होता, लेकिन उसके साथ कुछ इश्यूज थे तो उसको चेंज करके आप लोगों के लिए नया नंबर रखा है, आसानी से याद हो जाएगा आपको और आप इसको सेव कर लेंगे, आपको ब्रॉडकास्ट में भी मिल जाएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर है 4698304083, चेकआउट भी कर सकते हैं। देखते हैं जी पहला कॉलर इस नंबर पे कॉल करने वाला कौन होगा जिसको हम याद रखेंगे और फिर गाहे गाहे उनको याद किया करेंगे। हमें जब चीज़ें याद रखनी हो ना तो 4 साल के बाद हर चीज़ याद रखी जाती है। इंसान की बड़ी ज़बरदस्त खुद रब ने मेमोरी रखी है, उस मेमोरी की जॉगिंग हम नहीं करते, उसकी एक्सरसाइज नहीं करते, इसीलिए फिर हमारी मेमोरी दुखी हा वाली सारी कहानियाँ रह जाती हैं और जो काम की चीज़ है वो नहीं पहुँच पाती। ठीक, सो इस थॉट के साथ आज का ये शो शुरू करते हैं जी। नंबर है स्टूडियो का 9725019390। और आज के शो में हम उम्मीद करेंगे कि अगले शोज़ का जो रन डाउन मैंने आपको बताया, नेक्स्ट जो शो होने वाला है वो है द 10 डेज ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, 10 दिन की खामोशी और अपने साथ जो हमने लोनलीनेस बिल्कुल नहीं थी, सॉलिट्यूड में हमने क्या खोया क्या पाया उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चन सर आँखों पर, बहुत सारे लोगों ने कॉल भी मुझे की पर्सनली और उन्होंने कहा सर उसके बारे में आप बताइएगा ज़रूर, और कुछ ने कहा जी अभी तक आपने नहीं बताया, तो हमने कहा चलिए पूरा 1-2 घंटे का शो जैसे हम पहले किया करते थे, किसी भी चीज़ का टॉपिक बना लेते थे और फिर उस चीज़ का उसके बारे में हम सैर हासिल गुफ्तगू किया करते थे। ठीक है, जैसे सैर भी कराएंगे और साथ कुछ ना कुछ हमें हासिल भी होगा, मुस्तफीज करेंगे जी, इस्तफादा हासिल करेंगे चीज़ों से, बल्कि इस्तफादा हासिल करना ठीक नहीं, इस्तफादा करेंगे उसका यही मतलब है फ़ायदा हासिल करना। तो यही वो गलतियां जो हम अक्सर करते हैं, तो और गलतियों से याद आया क्योंकि अभी आपकी कॉल्स नहीं है, जब मैं लंबी कोई बात कर रहा हूँ तो आपकी कॉल्स मेरे पास स्टूडियो में नहीं होती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है क्योंकि आप लोग दम बखुद होकर कभी कभी खुद बखुद सुन रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपके लिए कोई एक खूबसूरत सा ट्रैक से हम शुरुआत करते हैं जी आपके, पहले तो आपको जगाया हमने जागो वाले लाल वाले बैंड से, जिनके हजरत जो थे वो यहाँ तशरीफ़ भी लाए थे, प्रोफेसर साहब ने क्या कमाल उनकी गायकी है, क्या गला है और क्या कमाल सिंगर हैं, उनको दोबारा भी इंशाल्लाह आपके हुजूर पेश किया जाएगा ताकि हुजूर समझते हैं आप, तो उसके आपको हाजिर करके, हाजिर से है हुजूर, तो उससे आपके पेश किया जाएगा और आप लोग भी साथ साथ इंजॉय करेंगे। आज का ये खूबसूरत शो नाम है जी लिसनर्स ऑफ रेडियो आज़ाद के, जिनके साथ मिलके हमने फ़न किया, 14 साल गुजारे और रेडियो आज़ाद ने 14 साल गुजारे, बोल के लब आज़ाद ने तेरे ने उससे ज़्यादा टाइम लिया और आप लोगों के साथ रहा। तो आज के पहले लकी कॉलर ऑफ द डे ये फ़ोन लाइन के ऊपर है, इनसे बात करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई मेहरबान है हमारे साथ रेडियो आज़ाद यू ऑन द एयर।
1: अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी।
0: जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं?
1: I'm fine, alhamdulillah. I'm the one who's driving and calling.
0: सब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अपना तारुफ हवा बहार की है।
1: Okay, no, I'm not driving right now.
0: ठीक है।
1: So, is any topic today?
0: कोई आज तो fun listener show है, आपके जिम्मे इसको, आपके जिम्मे ये है कि आप करेंगी बात और हमारे जिम्मे ये है, यानी हम, I am responsible for creating fun out of whatever you're gonna say or add okay. or contribute. जी
1: ओके, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल एंड यू हैव सेड दिस नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई हैव हर्ड इट दैट आई वांट टू नो इन मोर डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ टफ लव एंड हाउ टू अप्लाई इट बिकॉज आई सी लॉट ऑफ फैमिलीज अराउंड मी दे हैव किड्स एंड समटाइम्स दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट एंड So, how to apply it basically, like what they should do it. And you can give some examples and explain it more.
0: ठीक, सवाल ये है कि टफ लव का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे किया जा सकता है ताकि इसके रिजल्ट्स भी आएं और चीज़ों को और रिश्तों को बेहतर हैंडल किया जा सके, ये सवाल है।
1: स्पेशली इन रिलेशन टू किड्स।
0: बिल्कुल ठीक।
1: लाइक पेरेंट्स टुवर्ड्स किड्स।
0: बिल्कुल ठीक। नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग योर वर्ड। जब मैंने आपसे कहा था कि आप आइए जब भी वक्त हो कॉन्ट्रीब्यूट करें और उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है।
1: Yes, and I'm changing my name to, and I can refer, you can recognize myself as an Azad Show fan, honestly.
0: Nice of you, ठीक है। तो Azad Show fan आपका नाम रख देंगे, ठीक है?
1: Yes,
0: and,
1: yes.
0: इसका मतलब है कि it makes, इसके बारे में अंग्रेज पता है क्या कहता है? Because, you know, आपकी language ज़्यादातर English है। ये जो भी आपने कहा है ना कि आप अपना नाम चेंज करके Azad Show fan कर देंगी, तो इसका अगला आंसर ये होना चाहिए मेरी तरफ से, इट मेक्स टू ऑफ अस। ठीक है, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अ ग्रेट स्टार्ट। आज का ही चेंज, एक तो नाम रखा गया जी, एक व्हाट्सएप का नंबर चेंज हुआ, देखते हैं आज और क्या क्या चेंज हो रहा है। रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर।
2: नमस्ते आजाद जी, कैसे हैं
0: जी? आपने अपना नमस्ते नहीं चेंज करना है, ये बहुत खूबसूरत है।
2: आई कैन डू इट बट
0: नहीं नहीं हैबिट 5,000 साल से चल रहा है तो क्यों चेंज करना है?
2: या
0: जी,
2: मैं ये कह रही थी कि रिश्ता अगर किसी से बनाना है तो उसमें झुकना नहीं चाहिए।
0: अच्छा,
2: गलत रिश्तों में झुकना कुछ गलत
0: नहीं नहीं बिल्कुल
2: मतलब नहीं है, और कभी कभी झुक भी जाओ तो वो भी बुरा नहीं है, पर हमेशा अपना रिश्ता बनाए रहना चाहिए। जिंदगी की जो परीक्षा है उसमें कोई अंक नहीं होते हैं, मिलते हैं, लेकिन आप उसको हृदय से लगाते रहिए, जोड़ते रहिए, समझते रहिए, याद करते रहिए, तो उसी में आप पास हो जाते हैं।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत बात है ये। याद रखिएगा एक चीज, उन्होंने बहुत अच्छा अभी एक आइडिया दिया मुझे इस बात से कि रिश्ते में कभी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रिश्ते में कभी झुकना नहीं चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि कभी कभी अगर झुक भी जाएं तो उसमें कोई खबात नहीं है। देखिए, जब तक ये झुकने झुकाने का काम चलता रहेगा ना, ये कि टांग किसने अपने ऊपर रखनी है, हु इज़ वेयरिंग द पैंट्स, आपकी मर्ज़ी पे चलेगा या इनकी मर्ज़ी पे चलेगा, जब तक हम इन चक्रों में रहेंगे ना, ये हमें गोल चक्कर ही है रिश्तों का जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये विशेष साइकिल है। हमें अपनी सोचों में समझना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा रिश्ता, रिश्ता का मतलब है धागा, ठीक है जी, वो जो टूट नहीं रहा है, वो जो रिश्तों का धागा है वो दो बंदों से, उसका एक साइड है दूसरी साइड है और उसके बीच में जो भी चीज़ है इसको पकड़ के रखने को रिश्ता कहना चाहिए। कोई भी झुकना झुकाना जब हम आएगा ना, जब आप एडजस्टमेंट्स करके किसी काम में कोई बंदा बेहतर है, मैं आपको बताया तो मैंने अपने रिश्ते 20-30 साल से कैसे मेंटेन किए हुए हैं, कैसे उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लोग कहते हैं जी रिश्तों में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो उन लोगों में होते हैं जिन्हें कोई कॉन्शियनशियस नहीं होते, जो कॉन्शियस नहीं होते, जिनके अंदर कोई फोरसाइटेडनेस नहीं होती, जो एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को नहीं जानते, जो एक दूसरे की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को नहीं समझ पाते, उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो जब रोल डिफाइन हो जाते हैं, जब दो बंदे ये फैसला कर लें कि उन्होंने रिश्ता रखना है, चाहे ये घर में माँ बाप हैं, चाहे ये खून के रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते हैं, काम के रिश्ते हैं, जब ये पता चल जाए कि रिश्ता रखना है, तो पहले ये फिगर आउट कर लेना जहन में बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब है दो बंदे जो एक होने वाले हैं, इसका मतलब है दो अलग डायरेक्शंस नहीं हो सकती, डायरेक्शन एक होगी। दो बंदे पहले मिलकर फैसला कर लें, क्योंकि वो कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग है, वो जागे हुए हैं, माइंडफुल हैं कि क्या चाहिए और क्यों आ रहे हैं, और जब भी इनको कोई लगे कि कोई गड़बड़ हो रही है, रास्ते अलग हो रहे हैं, कोई मसले पैदा हो रहे हैं, तो दे ऑलवेज रिवर्ट बैक टू बेसिक्स। ये जिस इंस्टीट्यूशन से मैं तालीम हासिल करके आया हूँ, उनमें सबसे जो अच्छी चार बातें मैंने सीखी हैं, किसी दिन बाकी भी बातें बताएंगे, उसमें से एक था, जब भी आप गुम जाएं, डायरेक्शन लेस हो जाएं, चीज़ें सुकून ना आए, खुशी ना आए, रिजल्ट ना आ रहे हो, ऑलवेज गेट बैक टू बेसिक्स, सारा कुछ आसान हो जाएगा कि किस लिए ये रिश्ता बनाया था, कहाँ जाना था, बात क्या हुई थी, क्या लिखा गया था, क्या बोला गया था, क्या समझा गया था, वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं है जो पहले थी। अगर बंदे वही हैं तो रास्ते में मोनोटनी हो जाती है, रास्ते में लोग अपने अपने काम में गुम हो जाते हैं और रिश्ता भूल जाते हैं। तो इसको आपने याद रखना है कि मकसद क्या था। तो अगर ये झुक जाए, वो झुक जाए, इसको झुकाना है, उसको उठाना है, इस चक्कर में पड़े रहेंगे तो ये हमेशा इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव या एक के आगे दूसरा बंदा, जब हम ये करते रहेंगे ना, हमें कभी समझ नहीं आएगी। दो बंदे मिलकर इंडिविजुअल कॉन्शियस, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है एक इंसान की और दूसरे की मिलकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनेगी। आप अगर न्यूरो साइंस को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी खुदा ने इंसान के अंदर ब्रेन वेव्स रखी हैं। एक है कलेक्टिव ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट, वो आपको दो बंदे, एक बंदा जब किसी एनवायरनमेंट में जाता है ना, तो उसका जो दिमाग है वो पहले ही फ्रीक्वेंसी जो है ना, उधर की जो पावरफुल फ्रीक्वेंसी है उसको ट्यून इन कर लेता है और वो देखता है कि वो मेरे साथ चल रहा है या नहीं। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा आप किसी बंदे की कंपनी में बैठते हैं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं आप आउट ऑफ प्लेस महसूस करते हैं। तो आपका ब्रेन जो है ना बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, बहुत रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट है, वो आपसे बहुत आगे जा रहा है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे और उसको बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके साथ बस ऑटो पायलट पे चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आपको उसको कंट्रोल करना और उसको समझना और उसके मुताबिक ऑपरेट करना सिखाती हैं। तो जब आप ये करना सीख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रिश्ता होश में रहकर बनाया जाता है। टकराने से किसी आदमी से टकरा जाने से गले नहीं मिलते आप, उससे आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो हम रिश्तों में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, हमारे रिश्ते जो है ना, ये उसके लिए क्या वर्ड मैंने बनाया था, मैड म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का नाम हमने रिश्ता रखा हुआ है। हम टकरा जाते हैं एक दूसरे से, उससे कभी कुछ अच्छी चीज़ निकल आती है, कभी कोई बुरी चीज़ निकल आती है, हमारा कोई कंट्रोल कोई, क्योंकि कॉन्शियसनेस उसके अंदर इस्तेमाल ही नहीं की गई, दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, प्लान इस्तेमाल नहीं किया गया, उसमें दो बंदों के आपस में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं यूज़ की गई, कुछ नहीं हुआ, तो फिर जारी बात है यही रिजल्ट्स आएंगे। तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं देखते, झुकना झुकाना, इसका आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि कैसे रिश्तों को लंबा चलाया जा सकता है। मैं कैसे 25-30 साल से वो 8-10 रिश्ते चला रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है, एक दूसरे को ये देखना चाहिए उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उनका स्किल सेट कौन सा है जिसमें वो आपसे बेहतर है। हर आदमी जिस मैं रिश्ते में हूँ उसमें से वो इंसान मेरे से उस काम में बेहतर है, वो काम का कंट्रोल उसको देना है, उसको लीड करना है, आपको फॉलो करना है। उसको भी इतना स्मार्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ में लीड कर सकते हैं और आपके किस में रिजल्ट हैं, वो वाला पोर्टफोलियो आप ले लें। दोनों बंदों को अपना अपना क्या हो गया, रोल डिफाइंड हो गया। ये रोल डिफाइंड जब हो जाते हैं चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, चाहे घर में, चाहे कंपनी में, चाहे किसी भी सिस्टम के अंदर इसको आप डालेंगे। उसके बाद फिर आता है कलेक्टिव काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना उन चीज़ों में जिसमें वो कमज़ोर हैं, वो आपसे सीखेंगे, इस काबिल समझेंगे। बाहर से जाकर वो सीखने की कोशिश करते हैं, अपने से नहीं सीखते, उस चक्की की कोई इज्जत नहीं करते जिसका पीसा हम खाते हैं, और बाहर से हम जो है ना हर बंदे से विजडम लेके आ जाते हैं और वो चीज़ें हमसे होती नहीं हैं। ये बड़ी खूबसूरत इसमें पंजाबी की एक शेर था, किसी और दिन आपको सुनाऊंगा मैं। तो ये आपने समझना है कि और आपने रिश्ता बनाया है, इसमें रहना है और लॉन्ग टर्म सोचना है। शॉर्ट टर्म सोचेंगे, रोज़ एक नया बंदा आपके सामने खड़ा होगा, रोज़ एक नई चीज़ आप बनाएंगे। तो लॉन्ग टर्म चीज़ बुनियाद मजबूत करनी है, उसके ऊपर काम करना है, अपने पे भी काम करना होता है। कॉन्शियंशियस जो आदमी होता है ना, जो माइंडफुल होता है, जो जागा हुआ इंसान होता है, कॉन्शियस बीइंग जो होता है, वो रिश्ते में अपने पे भी काम करता है, दूसरे पे भी काम करता है और रिश्ते पे भी काम करता है, प्रोवाइडेड दूसरा इंसान उसके साथ चलने की कोशिश करे जिस काम में वो अच्छा है और उस काम को करे जिसमें वो खुद बेहतर है और उसको लेकर आए और उसमें फ़ायदा दिखाए किसी दूसरे इंसान को, और कभी कंपेटिटिव ना हो और कभी दिमाग पे काम करना है। कल मैं किसी को कोई बात समझा रहा था कि देखें, अक्सर वो कहते हैं सर आप जज्बात के बड़े ख़िलाफ़ हैं, तो मैंने कहता हूँ मैं बिल्कुल जज्बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जज्बात ही रोबोट को इंसान बनाते हैं, जज्बात ही इंसान को मोमिन बनाते हैं, ईमान वाला बनाते हैं। जज्बात जिसका ताल्लुक हमारे दिल और दिमाग दोनों से, वही इंसान से कनेक्ट करके वही रूह के अंदर का जो स्पार्क है उसको सप्लीमेंट करते हैं, ऑगमेंट करते हैं, उसी से रिजल्ट हासिल किए जाते हैं। लेकिन जज्बात बिरयानी में नमक की तरह है, खूबसूरत कर देंगे, अच्छे से अच्छी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, परफेक्ट वो लग रही है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, एरोमेटिक है, सब कुछ है, लेकिन खा नहीं पाएंगे आपके, नमक नहीं है उसके अंदर। और कई लोग जब इस नमक को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो इसमें दोबारा इसको कम नहीं किया जा सकता, वो खाने के काबिल नहीं रहती। तो अगर कम होगा तो थोड़ा सा डाल देंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो जज्बात के बगैर ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। उस बादशाह के बेटे ने बिल्कुल यही कहा था कि मैं आपसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी मैं नमक से करता हूँ। बादशाह को बात बहुत बुरी लगी, बाकी कह रहे थे जैसे मैं हीरो जवाहरात से करता हूँ, पावर से करता हूँ, रब से करता हूँ, हर एक चीज़ से मिलाया गया लेकिन नमक से नहीं। तो बिल्कुल बाद में पता चला कि वो नमक बड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो इसी तरह चीज़ों को समझना और छोटे छोटे स्टेप्स लेके उनकी तरफ बढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। तो जज्बात, मोहब्बत, इमोशन, इमोशन कहते हैं जज्बात को। जज्बात वर्ड कहाँ से बना है? जज्बा, जज्बा है तो आपके अंदर यू फील अलाइव, तो उसी से जज्बात बने। तो इमोशन क्या है? मोहब्बत। इमोशन क्या है? किसी की इज्जत करना, किसी का मुकाम किसी को जहन में देना। ये फीलिंग्स जो हैं हमारी वो एहसासात हैं, वो जज्बात नहीं हैं। इसीलिए डिफरेंट वर्ड्स बनाए गए हैं लोगों को इन चीज़ों को एक्सप्रेस करके समझ सकें। एक थॉट आपके जहन में पैदा होती है। अब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, ये आपका उसके लिए जज्बा है, इमोशंस है। लेकिन उसके बाद जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ वो ये है कि जब आपसे बंदे से मोहब्बत हो गई, बंदी से हो गई, रिश्ता बन गया, काम से मोहब्बत होगी, पैशन से मोहब्बत होगी, अब जज्बात आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, अब आपका दिमाग इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है कि इस जज्बे को लंबे अरसे तक कैसे रखना है, इस रिश्ते को कैसे बना कर रखना है, इसमें से कैसे इसकी खूबसूरतियाँ आपके अंदर ट्रांसलेट होंगी, इसको कन्फर्म करना है। और वो जब भी कोई वीक थॉट या नीच थॉट आपके जहन में आती है उस पर अमल नहीं करना है। वो एक थॉट है आपके जहन में जो आई है, बैकग्राउंड की वजह से आई है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आई है, चाह की वजह से आई है, चाहे जाने की वजह से आई है, इसके बदले किसी चीज़ के आप लेना चाहते हैं उसकी वजह से आई है, वो उठानी नहीं है। उसको फीलिंग नहीं बना, उसको फीलिंग नहीं बनाना है, वो मेयर थॉट है। अपने जज्बे से आपने जुड़े रहना है और आप देखेंगे थोड़े से वक्त के बाद आपको वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। जो जल्दी में कोई आपने जज्बाती होकर कोई ऐसा स्टेप नहीं ले लेना कि बनी बनाई मोहब्बत, बना बनाया दोस्त, बना बनाया काम बिगड़ जाए। हमारे लोग अपने रिश्ते हॉर्मोन्स की वजह से बर्बाद कर देते हैं, अपनी पुअर इम्पल्स कंट्रोल की वजह से बर्बाद कर देते हैं। एकदम बोल पड़ने की वजह से बर्दाश्त कर सकते हैं, चुप रह के देख लें थोड़ी देर। साइंस आपको बताती है कोई भी इम्पल्स, कोई भी यूफोरिक कॉल जिस पे आप गिव इन करते हैं वो 15 से 20 सेकंड सिर्फ दबानी और बर्दाश्त करनी होती है, उसके बाद चीज़ें आपके इख्तियार में भी आ जाएंगी। आपको समझ लग जाती है कि ये कितनी स्टूपिड थॉट है और मैंने कितनी गलत बात की और मुझे कितना अफसोस हुआ, अगले बंदे को कितना अफसोस होगा और मुझे वो मुकाम कैसे मिले जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये वो वीक थॉट्स को फीलिंग, एहसास बना लेना और अपने जज्बे को या जज्बात को ख़राब कर लेना, इसके खिलाफ हूँ मैं। जज्बात के कोई ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, वो इंसान को इंसान बनाते हैं, उसी के दिल में वलवला पैदा करते हैं, उसी से रब कहता है मैं दिल बदल देता हूँ। उसने कहा मैं दिमाग बदल देता हूँ। बाद में पता चला कि वहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं न्यूरॉन्स तकरीबन 40,000, तो वो भी उसमें भी थॉट्स और उसमें भी फीलिंग्स हैं। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको जब आप ऐसे सोचेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbours. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offence, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
5: The vampire squid's defense. The vampire squid doesn't actually drink blood, and it doesn't spray black ink because it lives in the pitch black of the deep ocean. Instead, when threatened, it shoots out a sticky cloud of glowing bioluminescent mucus packed with light-producing spots to confuse predators.
6: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: And when we ask Allah, Allah allows us indeed, and He requires from us that we do whatever He has placed within our capacity to do to achieve what we believe is beneficial.
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
11: You could offer a quality service that really is second to none.
12: Or you could have offers that are simply unbeatable.
10: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
13: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
14: Has it clicked yet?
13: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूं आजाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आजाद हो सके अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
16: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: Nice of you. Thank you very much. Bahut hi khoobsurat thought diya. Dusri mere paas hai. Main uske baad baat karunga. Radio Azad, you're on there. Hello.
14: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم
14: السلام. اچھا سر مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ نے ابھی تھاٹس کی بات کی اور آپ نے بات کی کہ جو نیگیٹیوٹی آتی ہے آپ کے دماغ میں اس کو اپنے اوپر ساری نہیں کرنا چاہیے رائٹ. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان دیٹ کیس اگر دو بندے ایک ریلیشن شپ میں ہیں یا اس طرح کا ریلیشن شپ مینس کہ دے آر تھنکنگ دیٹ دے آر ان سم ایموشنل ریلیشن شپ یا کچھ ایسا ٹھیک ہے پسند کرتے ہیں یا کچھ ایسا تو اس وقت بھی تو نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے پازیٹیوٹی بھی آتی ہے اور پھر ایک بندے کو لگتا ہے کہ دیٹ اگر وی ڈونٹ ہیو دا کمپیٹیبلٹی یا اس طرح اس میں آپ کیا کہو گے؟
0: اچھا نائس آف یو میم تھینک یو ویری مچ. سوال بہت اچھا ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا اب سوال یہ تھا کہ دو بندوں ایک رشتے کے بیچ میں ہیں اس میں بھی پازیٹیوٹی آتی ہے نیگیٹیوٹی آتی ہے. میں ایکچولی اسی کے بارے میں اس سے پہلے بھی وہی بات کر رہا تھا کہ یہ اونچ نیچ آتی رہے گی. اس میں آپ نے جو تھاٹس آپ کے ذہن میں آتی ہیں تھاٹس کن چیزوں سے آتی ہیں بائی دا وے تھاٹس آتی ہیں جو آپ نے دیکھا ہے پاسٹ میں دیکھا ہے جو آپ نے کیا ہے جو آپ ابھی کر رہے ہیں جو آپ کے ارد گرد لوگ کر رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں ان تمام چیزوں سے مل کر آپ کے برین کے اندر نیورونس کی فائرنگ ہوتی ہے جھماکے ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ کے اندر جو ڈومینیٹنگ سائیڈ ہے آپ کی اگر آپ دکھی رہنے والے لوگ ہیں یا دکھی رہنے والے انسان ہیں تو پھر آپ دکھی تھاٹس اٹھائیں گے. جیسے گانے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو دکھی گانے پسند ہوتے ہیں ریزن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو ہیپی ہیپننگ ہپ قسم کی چیزیں نہیں پسند ہوتی. چوائس آپ کی اپنی ہوتی ہے. اس چوائس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جا کے پتہ چل سکتا ہے کہ ایسی چوائس کیوں ہے کیوں آپ اس طرح سوچتے ہیں کیوں آپ اس طرح کے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ اسی طرح سوچوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک پھر اور بڑا لمبا ایک پروسیس ہے اس کا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تھاٹ جب آئی ہے اس میں سے جو پازیٹیو تھاٹ ہے جو 10 times زیادہ اسٹرانگ ہے وہ تھاٹ آپ نے اٹھانی ہے اور وہ تھاٹ جو کنڈیوسو ہے ریلیشن شپ کے لیے. دوسرا آپ کا اس میں یہ پوائنٹ بن سکتا تھا کہ ایک بندہ اگر یہ والی تھاٹ اٹھاتا ہے اور اس کی فیلنگ بناتا ہے اور اس طرح آتا ہے رشتے کے اندر تو دوسرا بندہ اگر یہ کام نہیں کرتا تو پھر کیا کریں؟ پھر رب نے یہ آپ کو بتایا سمجھایا ہے علم البیان آپ کو کمیونیکیشن سکھائی ہے. آپ پیار سے بات کر کے سمجھا کر ریزن اینڈ لاجک دے کر سمجھا سکتے ہیں اس کو ہیلپ کی جا سکتی ہے. آپ اپنے ایکشن سے آپ لیڈ کر سکتے ہیں پہلے آپ کر کے دکھائیں گے پھر دوسرا بندہ کرے گا. اس طرح کرتے کرتے آپ ان کو آہستہ آہستہ اگر انسان کے پتر ہیں وہ تو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ آ جائے گی اور وہ ساتھ ساتھ چل کے پہلے اگر انہوں نے نہیں دیکھا تو ابھی دیکھ لیں گے. پرانوں کے بل جو ہیں وہ آپ کے اوپر نہیں پھاڑیں گے کیونکہ جس عمر میں ہم ہیں اس میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھ کر سن کر سمجھ کر آ چکے ہیں. ہر آدمی کو یہی لگتا ہے کہ اس کو بہت پتہ ہے. دوسری بات کہ وہ بندہ میرے مطابق کیوں نہیں سوچتا. دیکھیں غور سے یہ بات سنیے گا آپ کی جو آنکھ ہے نا یہ کلر اس وقت جو میں نے پہنا ہوا ہے نا آپ کو یہ کلر اس طرح نظر آ ہی نہیں سکتا جیسے یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے بہتر دیکھ سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے برین کے اندر جو جگہ ہے جو کلر کو پرسیو کرتی ہے میری آنکھوں کا جو کلر ہے یہ تمام چیزیں مل کر وہ لائٹ جو اس وقت پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی جس کو آپ دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے وہ سب کا سب مل کر جو کلر بنا رہا ہے دوسرا انسان وہ کلر نہیں دیکھ سکتا پاسبل ہی نہیں ہے. تو دوسرے انسان کو اس کلر کے نزدیک نزدیک ضرور دکھایا جا سکتا ہے. اگر یہ بلو ہے تو اس کو بلو نظر آ سکتا ہے اور کلر بلائنڈ بندے کو جو بھی اسپیسیفک ریزنز ابھی میں نے بتائے ہیں اس کے مطابق کبھی یہ کلر نظر نہیں آئے گا لیکن اس کو یہ گرین نظر آتا ہے تو کچھ کیا نہیں جا سکتا. تو بالکل ایسے رشتے کئی ہوتے ہیں ایک ہی چیز ہے دو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے سے. ایک ٹیبل پر 6 لکھا ہوا ہے مجھے وہ 6 نظر آ رہا ہے اس طرف بیٹھے ہوئے بندے کو 9 نظر آ رہا ہے. غلط وہ بھی نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں لیکن کیسے اس کو فگر آؤٹ کریں گے اس کو میں کیسے اس طرف لاؤں گا یا میں کیسے وہاں جا کر دیکھوں گا بھائی اس کو 9 نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ چیز کیسے اور وہ بھی انڈرسٹینڈ کرے گا. اگر اس کا کوا سفید ہے تو پھر کچھ ہو نہیں سکتا اس کے لیے. پھر آپ کو پھر آپ دو بندے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ایک اسٹوپڈ نہیں رہا پھر دو ہیں اور لمبے عرصے تک اگر آپ یہ کام چلائیں گے اور ان سے اگر آپ کوئی اور چیز پیدا کریں گے تو پھر یہی حالت ایسی ہی رہے گی اور پھر یہ کبھی چیزیں سیدھی نہیں ہوں گی. اسی لیے کمپیٹیبلٹی کا کہا گیا. اسی لیے کہا گیا کہ خاندان دیکھ لو. اسی لیے کہا گیا کہ سوچ دیکھ لو رہن سہن دیکھ لو کمپیٹیبلٹی فائنینشیل دیکھ لو. یہ 3-4 چیزیں بتائی گئی ہیں. اس کے لیے دین دیکھ لو ताकि राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और कुछ एक्शंस जो आप लेते हैं वो एक जैसे रहें, ताकि ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, ताकि जब आप कोई ऐसी चीज़ या ऐसा बंदा या ऐसा रिश्ता बनाते या सिलेक्ट करते हैं, ये पहले सोचने की चीज़ें। फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहता है जी पहले हमें नहीं पता था, जैसे खलीक कुरैशी साहब कहते हैं आज़ाद जी आप हमें 80 साल की उम्र में मिले तो अगली 10 साल में ज़िंदगी बदल गई मेरी, पहले मिल जाते तो और बहुत कुछ हो जाता। तो लेकिन उनकी ज़िंदगी बदली क्योंकि मैंने जो कुछ उनको बताया उन्होंने एज़ इट इज़ अप्लाई किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा मेरी 30 साल का ये एक्सपीरियंस है, 40 साल का वो एक्सपीरियंस है, मैंने दुनिया देखी है, आप अभी छोटे हैं, कम उम्र हैं, फलां हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उनकी ज़िंदगी के चार बड़े मसाइल थे, चारों पर मैंने सिर्फ एक दफ़ा उनसे कहा, अगले दिन उन्होंने अप्लाई किया, एक दो तीन सालों में वो सब ख़त्म हो गए। एंड ही वॉज सो ग्रेटफुल, मैंने उनसे ज़्यादा किसी इंसान को ग्रेटफुल नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में। आज भी जब वो अल्जाइमर का शिकार हैं, इज़ 94 ईयर्स ओल्ड, आज भी जब वो मुझसे मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं आपके मुझ पे बड़े एहसान हैं। मैंने और कभी उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊँगा। और एक 85 साल का बंदा एक दिन मुझे कहता है आज़ाद आई वॉन्ट यू टू मूव इन विद मी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मैं कैसे मूव इन हो जाऊँ? तो मैंने कहा क्यों? तो आगे से कहते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू बिकॉज यू आर प्रेशियस। तो मैंने कहा सर मैं आपकी आधी उम्र का हूँ, मैं मतलब आपका मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए, आप मेरे लिए खाना बनाते हैं, शौक से मुझे बुलाते हैं, मैं आपकी कंपनी इन्जॉय करता हूँ, हम मिलकर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, देखते हैं सुनते हैं उसके बारे में बात करते हैं, मैं आपसे इतने एक्सपीरियंस से इतना को लेता सीखता हूँ, तो ये आपका काम नहीं है करना, और जिस उम्र में आप हैं कुछ दिन आप मेरा काम करेंगे, फिर मैं आपके काम करता रहूँगा, और उसके बाद चीज़ें मसाइल का शिकार हो जाएंगी, फिर भाभी बच्चे बाकी लोग यू नो एक मसला एक बन जाएगा। तो हर बंदे का अपना तरीक़ेकार होता है बात करने का, चीज़ों को समझने का। जब आप फॉलो ही नहीं कर सकते ना किसी भी चीज़ को, ईमान ही नहीं है आपका। जब देखें ईमान के बारे में एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मेरे से बहुत लड़ते हैं ईमान के बारे में, एज़ इफ़ मैंने ठेका लिया हुआ है रब वाली साइड को क्लियर करने का और मैं वकील हूँ उनका। ना हमारी इतनी औकात है ना मजाल है। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ और ये मैं साबित कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी से और अपने इर्द गिर्द से और हुज़ूर पाक की इस बात से कि जो इंसान रब का शुक्रगुजार नहीं है वो बंदों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह जिस आदमी में फेथ है ही नहीं, बिलीव ही नहीं है उसका, वो इंसान जो 25-30 साल से उसके साथ रह रहा है वो उस पर देख कर सुन कर उसके एक्शन और उसके रिजल्ट के बावजूद उस पर ईमान नहीं ला रहा, और उसके जहन ने उसको कौन किया हुआ है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और जिसने सब करके दिया वो नहीं है। ऐसा बंदा रब पे मुझे कह रहा है जिसको मैंने देखा ही नहीं, मैं उस पर बिलीव कर लूँगा, और कहीं पर भी उसकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता कि रब पे बिलीव है, ना सब्र है, ना तवक्कुल है, ना शुक्र है, ना जब मुश्किल तकलीफ़ वक्त आती है स्टैंड ले सकते हैं, ना किसी के साथ स्टैंड ले सकते हैं, तो कहाँ है रब हमारी ज़िंदगी? तो फेथ अगर नहीं है तो इंसानों पर भी नहीं, सच्चाई अंदर नहीं है तो नज़र भी नहीं आएगी, अच्छाई भलाई अंदर नहीं है तो हर एक पे शक रहेगा, झूठे को सब कुछ झूठ लगता है, शराबी को लगता है सब पीते हैं सिर्फ बताते नहीं छुप कर पीते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो इस तरह सोचते हैं, जो खुल के बोलते हैं कम से कम रब के मेरे पे इतनी मेहरबानी ज़रूर है कि ये दुआ करने के बाद क्या मेरे रब मुझे चीज़ों की असल हकीकत का इल्म दे, लोग खुल कर मुँह से बोल देते हैं, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, कत्ल क्यों ना हो जाए और बड़े जालिम और गुनाह और मतलब ना हो जाए, चाहे कबीरा हो या सगीरा, क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर डॉक्टर को या वकील को काम बताए बगैर आपकी मर्ज़ी नहीं हो सकती। तो ये वो तमाम चीज़ें जिसमें साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग से होना है। चाह से कुछ नहीं होता, चाह आपके अंदर सिर्फ बेचैनी पैदा करती है, अगर तो इसका मतलब है आप कुछ ऐसी चीज़ चाह रहे हैं जो आपकी नहीं बनती, आप इज़्ज़त वाले काम करते नहीं और आपकी चाह ये है कि आपकी इज़्ज़त अफजाई हो, आप कदर कराने वाले काम नहीं करते और आप चाहते हैं कि आपकी कदर बढ़े लोगों की नज़र में, तो उसी वक्त एंग्जाइटी स्ट्रेस शुरू हो जाएगा आपको, बिकॉज आप उसके लिए कुछ एक्शंस नहीं ले रहे। प्लान कहाँ है, रिजल्ट्स कैसे आएंगे? दीवाने के ख्वाब में आखिर में दीवाने को वो मिलता नहीं है जो उसको दिखता है या वो दिखाता रहता है खुद को, वो एक हवा सा होता है, लेकिन ख्वाब वो जो आपको सोने ना दे, अक्सर तो लोग आपसे कहते हैं, लेकिन ख्वाब वो जिसके ऊपर आप जब चलें हर वक्त हर सांस हर लहजा उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, खिलवत में हैं, जलवत में हैं, लोगों के साथ हैं, अकेले में हैं, कुछ सोचते हैं, डायरेक्शन आपकी उस गोल की तरफ है जिसमें आप जा रहे हैं, एंटरटेन करें, खुश रहें, जो मर्ज़ी आप करते हैं, कोई भी चीज़ आपको बेचैन नहीं करेगी क्योंकि आप उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जिसकी मंजिल छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आप हिट करते जा रहे हैं और स्ट्रेस कम होता जा रहा है, मोटिवेशन बढ़ती जा रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को जोर जबरदस्ती से आप अपने साथ नहीं

0: अच्छा कुछ
1: उसने गल
0: चीजें
1: नोट
0: शेयर
1: उसने गल नोट कीती है,
0: जी।
1: इनको बोलने वाले सारे मुझ अथरे। और देखें, और हिंद को कमाल जबान है। अब मुझ जब हम कहते हैं ना, इसका मतलब है बहुत। और हिस्पैनिक्स कहते हैं मूचो ग्रासियस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड, ये सब कुछ है, ये बंदों ने सब फ्रॉड किया हुआ है। ऐसे वर्ड्स निकालते हैं, उसको हिलाते जुलाते हैं उर्दू हिंद को पंच तो पंजाबी वाले, और कहते हैं जी ये इसका लफ्ज़ है, ये उसका लफ्ज़ है, मिक्स करके सारी बातें एक जैसी हैं। जैसे हमने रब को मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम दे के अलग अलग डाकखाने बनाए, अलग अलग लड़ाई झगड़े बनाए, और रब वही है, तो नाम कुछ भी रख लें आप उसका।
0: ऑलवेज ऑलवेज
1: क्या
0: ऐसे
1: कहते
0: ही है। कुछ चीजें शेयर करनी थी।
1: करिए ना।
0: अच्छा सो घर में देसी होने के नाते माँ का जो रोल होता है बेसिकली रोबोटिक स्टाइल, और उसमें वो ये समझ रही होती है कि मैं
1: आपने
0: बहुत हेल्प कर रही हूँ।
1: एक मिनट मेरे साथ
0: जी
1: होल्ड करना है, एक मेहमान को हमने ऑन एयर रखा हुआ है और वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ रही है, पहली व्हाट्सएप की कॉल है, मुझे उनको लेना है। रेडियो आजाद जी, रोंदिया
2: आजाद जी, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम जी।
1: हीरा सिंह जी, की हाल है? सारे चीजें ऐसी डिसरप्ट करके, ऐसी पहले क्या शेर आया हैं जी। जी की हाल है?
2: शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई फील एब्सोल्युटली ऑनेस्टली ग्रेटफुल, लाइक यू नो यू एक्चुअली पुट मी ऑन द एयर, एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग।
1: वी विल वेट, हम सबको यही सब्र शुक्र सीख रहे हैं। देयर आर अदर पीपल आल्सो वेटिंग इन द लाइन, और कुछ को मैं ड्रॉप कर देंगे और बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम सब एक दूसरे सब्र करके सीखेंगे। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करेंगे, एंड यू नो पीपल पुट अप विद अस फॉर लॉन्ग, सो व्हाई नॉट। जी
2: सर, दो चीजें अभी आपकी बातों से, जो एक चाह की बात कर रहे थे और रब की बात कर रहे थे
1: जी,
2: और मैंने बैठे बैठे इंटरनली रियलाइज सो मच, लाइक चाह, आई हैव बीन फाइटिंग फॉर एजेस टू बी ऑथेंटिक
1: जी,
2: बट वो मेरी चाह इतनी स्ट्रॉन्ग थी दैट आई फॉरगॉट टू टेक द पाथ व्हिच वुड टेक मी टुवर्ड्स बीइंग ऑथेंटिक। आई जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सो मच ऑन बीइंग ऑथेंटिक, मैं अपने अंदर झांकना ही भूल गया।
1: आपने ना, मेरे साथ एक बात थोड़ी सी बीच में, मैं आपको इसके बारे में बात बताना चाहूंगा। एक मूवी है, जरूर देखिएगा, द बुक ऑफ ईलाई, डेंजल वॉशिंगटन की फिल्म है। उसमें उस बंदे के पास बाइबल का एक ही नुस्खा, एक ही कॉपी रह जाती है, और उसको ले के उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो, और उसके लिए विलन जो होता है वो पावर बन चाहने के लिए, ऑथेंटिक होने के लिए, लोगों को अपने यू नो सबसर्वियंट करने के लिए उसको वो किताब चाहिए होती है। उसने सारे बंदे अपने भेजे होते हैं हर तरफ से, और यहाँ पे एक बंदा जो कि वॉरियर होता है उस किताब को प्रोटेक्ट करके, और उसके लिए वो हर किस्म की कुर्बानी देता है। और आखिर में जब वो किताब वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ उसको प्रेस में जहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो उस फिल्म की आखिरी लाइन्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए जो मैं अभी अपनी फिल्म लिख रहा हूँ उसमें आखिरी लाइन्स में बिल्कुल पावरफुल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि थॉट प्रोवोकिंग हो, लोग उसके बारे में कुछ सोचें। उसमें वो कहता है कि आई वॉज सो कॉट अप इन प्रोटेक्टिंग द बुक दैट आई फॉरगॉट टू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉज सपोज टू डू, एंड दैट इज टू लिव बाय द बुक। मसला ये है कि जो जैसे अभी आपने कहा ना, मैं ऑथेंटिक बनने के लिए फाइट कब से कर रहा हूँ, और मैं ऑथेंटिक हो नहीं पा रहा, और मैं बार बार वो हदफ गोल जो है वो मिस कर जाता हूँ। पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो अभी तक आपने नहीं की, इसीलिए उस चीज़ के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो है स्टॉप फाइटिंग। इज़राइलाइट्स जो है ना, इज़राइल बेसिकली हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था, इज़राइल। इज़राइल का मतलब है द वन हु रेसल्स विद गॉड, बिकॉज दे वर सो पावरफुल, और अपनी विल के साथ, कि रब की विल के साथ लड़ने को द वन हु रेसल्स विद गॉड। और इस्लाम कहते हैं द वन हु गिव्स इन टू द विल ऑफ गॉड, तस्लीम कर लेता है उसको, मान लेता है। जब आप चीज़ को स्ट्रगल करना बंद करेंगे, जोर लगाना बंद करेंगे, शायरी जोर ज़बरदस्ती जोर से नहीं निकलती, जोर लगाने से काफ़ी रदीफ नहीं होता, उसमें अपने आप को सिर्फ सुकून में रखना होता है, और ब्रेन वेव एक आती है उसको पकड़ना होता है। आर्ट वर्क्स जोर लगाने से नहीं पैदा होते, कोई भी खूबसूरत नफीस, क्योंकि आर्ट वर्क नफीस काम को कहते हैं, डेलिकेट काम को कहते हैं। कोई भी चीज़ जो डेलिकेट होती है वो जोर लगाने से नहीं की जा सकती। शायर कहते हैं ना, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो बिल्कुल इसी तरह इसको, डेलिकेट चीज़ को, रिफाइन चीज़ को जोर ज़बरदस्ती से नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ महसूस करना है, एहसास करना है, और

0: अपने आप को ढीला छोड़ना है। ऑथेंटिसिटी खुद ब खुद आ जाएगी, जोर लगाने से, अपने आप को बीट अप करने से नहीं आएगी। आप एक पाथ के ऊपर हैं, उस पैथ पे आपने गोल बनाया हुआ है, उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स आप हिट करते जाएंगे और अक्सर नहीं हिट हो रहे होंगे। वहाँ पर अपने आप को बीट अप नहीं करना है। आप तो अच्छे आदमी, आप पहले से कोशिश कर रहे हैं, कंडीशनिंग आपको तोड़ रही है, एनवायरमेंट आपको तोड़ रहा है, तो आप ये सब आपको तोड़ रहे हैं, लोग आपको तोड़ रहे हैं, सेट ऑफ बिलीव्स आपको तोड़ रहे हैं, आप खुद भी खुद को तोड़ रहे हैं। तो ये नहीं करना है, वो तोड़ रहे हैं, आपको जोड़ के रखना है और इस पे अपने आप को ठंडा रखना है। हो जाएगा, कर रहा हूँ कोशिश, और मुस्कुराना है। इस दफ़ा फिर फेल हो गया हूँ, गुस्सा तोड़ना चाहता हूँ मैं अपना, गुस्सा नहीं करूँगा क्योंकि गुस्सा हराम है, क्योंकि ये अकल को खा जाता है, क्योंकि इससे आदमी की सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इससे लोग स्टंट हो जाते हैं, अपने आप को रिजिड बना लेते हैं, लॉक कर लेते हैं खुद को। ओके, प्यार से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, अपने साथ भी उसी तरह कहना है कि जिस दिन गुस्सा आया बाद में कुड़ता है, क्यों आया, किस एनवायरनमेंट क्यों आया, क्या किया मैंने, उसने क्या किया, मेरा क्या गलत था, उस पे मेरा कंट्रोल है नहीं, मुझ पे है, हाँ है, कैसे बदलूँगा, अल्फाज कौन से बदलूँगा, कम मिल लूँगा, कम जब तक मैं इस काबिल नहीं होता आगे नहीं जाऊँगा। बिल्कुल एलर्जीज़ की तरह, जैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ 30-40 साल से, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एलर्जीज, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एजमा, आई ऑलवेज थॉट आई हैड नो प्रॉब्लम विद ADHD, कुछ नहीं था, मुझे पता था मैं एक दिन इसमें से निकल आऊँगा। जब तक मैं जोर लगाता रहा, कुड़ता रहा, मैं क्यों, दुखी होता था, जब मुझे समझ आया मैं ही कर सकता था, इसलिए कि बाकी सब कुछ जो मुझे मिला है उसके साथ ये चैलेंजेस हैं, इसको एक्सेप्ट करो, ढीला छोड़ो खुद को, वक्त के साथ ये चीज़ें ठीक होंगी। और फिर एक वक्त आया, स्टैमरिंग भी ख़त्म हो गई, एजमा भी ख़त्म हो गया, एलर्जी बहुत कंट्रोल में है, सांस नहीं बंद होता है, चीज़ें आराम से सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं। ये करते करते एक स्ट्रेंथ बिल्ड होगी अंदर, माइंड में, माइंड ओवर मैटर वाली, जिसने मैटर के ऊपर कब जो फतह हासिल कर ली, वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को एक्सरसाइजेस कर करके, कमज़ोर था तो वो भी उसकी ने भी स्ट्रेंथ पकड़ ली, बाकी सारे वाले दे आर फॉलिंग अपार्ट, खुल रहे हैं सारे के सारे हमारे इर्द गिर्द, लेकिन वो मुसलसल करने ही असल काम है, कंसिस्टेंसी, एक चीज़ के ऊपर कन्वर्ज कर देना तमाम चीज़ों के, और उसके बाद नहीं होता तो फिर गो ईजी ऑन इट, फिर उन लोगों से हेल्प लेना, उस एनवायरमेंट से हेल्प लेना, उन बातों से हेल्प लेना, उन वर्ड से हेल्प लेना, उस किताब से हेल्प लेना, उस माहौल से हेल्प लेना जो आपको लगता है कि आपकी साइड का है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वहाँ से लेंगे, लेते रहना और फिर एनर्जी साथ साथ देते रहना, ये पूरा एक प्रोसेस है मेरी जान। जब आप ये करोगे आपको पता ही नहीं चलोगे चलेगा, अब यू विल बी लाइट एज अ फेदर वन डे। स्टूडेंट जब तैयार होता है तो टीचर अपीयर होगा। आप जब अपने आप को ढीला छोड़ेंगे तो आपको जोर लगाने से चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। मैं भी ये करता रहा हूँ 30 साल, इसलिए बता रहा हूँ, बाद में आपको समझ आ जाएगी कि सब कुछ दिखता है, सब नज़र आता है। आवाज़ें 30-30, 40-40 साल पुरानी याद रहती हैं, मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वर्ड्स जो वो वाली ख्वाहिशात और बातें जो आप चाहते हैं कि आपके जहन में रहें वो पक्की हो जाती हैं, बाकी जहन से महव हो जाती हैं जो आपको कमज़ोर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है, मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऑथेंटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ। वक्त पर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुझे मिलनी शुरू हो जाएंगी, नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, नहीं भी मिलती हैं, आई एम हैप्पी दैट आई एम ऑन दिस पैथ, आई एम हैप्पी दर। मैं जब रात को सोता हूँ मेरा कोई मकसद होता है, कोई प्लान होता है, सुबह उठ के मैं किसी काम पे लगता हूँ, मेरे इर्द गिर्द 2-4 लोग हैं जो मेरी इज्जत करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, नहीं भी करते वक्त पे करेंगे कर लेंगे, मैं उनके लिए अच्छा सोचूंगा, मैं उनको घर से निकलता हूँ उनको कुछ देने के लिए, लेने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि देने वाले ने मुझे ऐसा बनाया है तो मेरे अंदर उसका स्पार्क है, मेरे अंदर लेने वालों का स्पार्क नहीं है, देने वाले का स्पार्क है, तो मैं गिविंग पे कैसे ध्यान दूं, अगले खुद ही गिव करने आ जाएंगे, गिव इन भी कर देंगे, गिव अप भी कर देंगे, गिव भी करेंगे, रेसिप्रोकेशन भी शुरू हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये सब करने में 25 साल लगे हैं, तो इसीलिए मैं किसी भी बंदे को जब वो रास्ते में, बहुत जल्दी लोग थक जाते हैं, थकना नहीं है, अक जाते हैं, अकना नहीं है, और बार बार एक ही रिजल्ट देख के पक जाते हैं, पकना नहीं है, ढीला छोड़ना है, चीज़ों के ऊपर काम करना है, हर दफ़ा मुस्कुराना है जब भी गड़बड़ हो जाएगी, रिएक्शन बदलेंगे तो आपके एक्शन आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे। हमारी सारी ज़िंदगी रिएक्शनरी है, एक्शंस तो बहुत बात के आते हैं, इम्पल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, इसमें बेहतर होना है, इसमें अपने आप पर काबू पाना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली. रोना आता है तो आंखों से आंसू आने चाहिए. मैंने आज तक कभी अपने आंसू रोके हैं? मैंने आपसे 10 साल पहले कहा था, जब भी मेरी आवाज़ तब सिर्फ कमज़ोर होती है या गुलूगीर होती है या मुझे जैसे मेरी आंखों में जैसे कोई बंदे की आवाज़ में आंसू उतर आते हैं, वो सिर्फ तब होता है जब मैं रब के लिए ग्रेटफुल होता हूँ. ग्रैटिट्यूड मेरी आंखों में आता है जब लोग मुझसे प्यार मोहब्बत की बात करते हैं. आप मुझ पर सख्तियाँ करें, नाराज़ हों, लड़ाई करें, जितना आपने मुझसे लड़ना है, मैं कभी नहीं थकूँगा. ना मैं मुझे कभी घबराहट होती है, ना मैं, और जो मुझे इमोशन आता है मैं उसको रोकता नहीं. वही नज़मों में आता है, वही मोहब्बत जिसको मैं देखता हूँ तो आता है. वो खलीक साहब के पास बैठते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. मेरा जब हाथ पकड़ते हैं प्यार मोहब्बत करने वाले लोग, मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, बड़े हों, मैं देखता ही नहीं हूँ वो कौन है. सिर्फ प्योर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पर मेरे अंदर ये चीज़ होती है. तो आपने भी अपने आप को वीक नहीं समझना है. ये अच्छी चीज़ें हैं, ये आपके अंदर रब ये सब ने उसने रखा है. आपको सिर्फ सही वक्त पे, बाद में ये बिल्कुल सही वक्त पे निकलेगा. कभी आपको कोई वीक परसीव नहीं करेगा. ये स्ट्रेंथ है आपकी. जिस दिन इंसान होना स्ट्रेंथ है, इमोशंस होना स्ट्रेंथ है, लॉजिक और रीज़न होना स्ट्रेंथ है, जब आप इनको स्ट्रेंथ के तौर पे अप्रिशिएट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ये आपके हाथ पांव बन जाएंगे. यही पूरा प्रोसेस है, इसी को सिर्फ फॉलो करना है. गारंटी मैं दे रहा हूँ, आज तक मैंने जिसको जो गारंटी दी है वो हमेशा ठीक हुआ है, काम पूरा हुआ है. डॉक्टर अगर एक चीज़ की गारंटी दे रहा है कि दर्द ख़त्म हो जाएगा, तो उसने 25 साल तक ये करके, खुद पे अप्लाई करके, दूसरों के अप्लाई पे देखा है. दवाई सही नहीं ली जा रही, डोजेज को एडजस्ट करना है, एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना है, कौन सी चीज़ों से दर्द बढ़ रहा है, क्यों है ये दर्द, इसको डिग आउट करना है. और स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे दर्द कम होगा, आपका असल पर्सनैलिटी आपकी बाहर आएगी. अभी फियर है, डर है कि दर्द फिर हो जाएगा. डरना नहीं, हम दुनिया में कश्ती बंदरगाह पे खड़ी होने के लिए नहीं आई बनी है. शिप इसलिए नहीं बनाई जाती कि वो खड़ी रहेगी बंदरगाह के ऊपर, पोर्ट के ऊपर. वो दरियाओं में, समंदरों में जाने के लिए बनी है. वो वियर एंड टीयर भी होगी, कभी कभी घबराहट और डर भी होगा, लेकिन वही कोहना मश्क सेलर्स बनाती है, वही वो बंदे बनाते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं. रब यही चाहता है इंसान से कि इंसान जो काम फरिश्ते नहीं कर सके, जिन नहीं कर सके, इतने पावरफुल हैं. हम वीक फिजिक बॉडी के साथ भी, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर और हमारी जो विल पावर है और जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनको भी नहीं दी गई. वो एक दिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो रिफाइंड हो रहा है. हज़ारों साल लग गए उसको रिफाइंड होने में, तो हम भी कोशिश करेंगे रिफाइनमेंट की, और अगली जनरेशन, हमारा स्टूडेंट, हमारे लोग, हमारे प्यार करने वाले आगे हमको लेके चलेंगे इन थॉट्स को, इन बातों को. ये वो दरख्त है जो 100 साल में लगता है और उसके बाद 1000 साल तक चलता है. तो इस तरह चीज़ों को देखना और सोचना है. I hope it made some sense.
1: Oh, sir. Bahut, it was too many things going on for me at the same time. And at the same time, I was emotionally connecting to you, or I was a little bit busy collecting my own, you know, tears at the same time.
0: Koi masla nahi. I was also doing the same thing. You just couldn't feel it in my eyes because I'm wearing glasses. And inside, I was feeling what you're going through also, but at the same, because I have been there.
2: Aur yahan aaj ke hamare is program ka ikhtitam hota hai ji. This is Azad signing off. You can also listen to our radio station at www.radioazad.us. Iske alawa agar aap poems sunna chahte hain, nazme sunna chahte hain, to aap SoundCloud pe ja sakte hain. MixCloud pe specially batana zaruri hai un tamam logon ko jo shows ki recording ya apne favorite shows ki recording sunna chahte hain apne time ke upar. Aap log MixCloud pe jaake Radio Azad ko search kijiye aur hamare shows wahan pe aap unki recording sun sakte hain. Aur ye to aapko maloom hi hai ki jin logon ke paas iPhone app hai, Android है, BlackBerry है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे iPhone ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद. दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.

किस मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं जब उनकी कोई तारीफ करता है? तकबर। जेस्चर क्या होता है आमतौर पर? लोगों का फिजिकल जेस्चर क्या होता है? कंधे उचकाते हैं, सर उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, ये सब क्या है? सेल्फ प्रोजेक्शन। तो बंदा मोमिन क्या करता है? जब उसे कोई खुशी मिलती है, जब उससे कोई अच्छा काम होता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो वो क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाही बिनेअमतिही ततुम्मु सालिहात। अल्लाह की तारीफ। मेरी क्या तारीफ है? अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम्द कि उसके नेमत और उसके फजल से सारे अच्छे काम अंजाम पाते हैं। ये माना है इसका, अल्हम्दुलिल्लाही बिनेअमतिही ततुम्मु सालिहात। यानी अगर मुझे कुछ करने का मौका मिल गया, तौफीक हो गई, तो ये दरअसल किस वजह से है? अल्लाह के फजल से। बिनेअमतिही का मतलब है उसकी ब्लेसिंग है, उसका फजल है, उसका इनाम है, उसकी रहमत है, उसका करम है। तो मोमिन अपने कामों का क्रेडिट खुद नहीं लेता, बल्कि फौरन उस हस्ती को देता है जिसकी तौफीक से ये काम पूरा होता है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसके फजल से अच्छे काम अंजाम पाते हैं। और अगर इसके बरक्स मामला होता, कोई नुकसान हो जाता, कोई तकलीफ होती, क्योंकि दोनों ही हालतें होती है ना, कभी इंसान को खुशखबरी मिलती है और कभी कोई जिंदगी में ऐसी चीजें भी होने लगती हैं जो मर्जी के खिलाफ हैं, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, उस वक्त भी बंदा अपने रब से नाराज नहीं होता। वो क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब भी अल्लाह की तारीफ करता हूं, अला कुल्ले हाल, हर हाल में, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, भले मुझको कुछ मिले या ना मिले, कोई काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो या ना हो, मैं अपने रब से नाराज नहीं हूं, मैं फिर भी उसकी तारीफ करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। जब ऐसी हालत में इंसान अल्लाह की तारीफ के काबिल होता है, तो फिर उसका रब उससे कितना राजी हो सकता है? बहुत राजी। सहाबा कराम का यही तरीका था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते उन्होंने देखा। क्यों तकलीफ में क्यों अल्लाह की तारीफ और क्यों अल्लाह का शुक्र और नुकसान पर क्यों शुक्र? बाज़ोकात एक चीज हम नापसंद करते हैं और वही हमारे हक में बेहतर होती है। असा अन तकरहु शैअन व यजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें सख्त नापसंद हो और अल्लाह उसी में बहुत बड़ी खैर तुम्हारे लिए रखे। वो एक मुहावरा ना अंग्रेजी कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी ये भी एक ब्लेसिंग है लेकिन तरीका और है। तो अल्लाह ताला अपने बंदे पर कभी भी जुल्म नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में, किसकी हम, कौन है वो? रब्बुल आलमीन। रब कौन होता है? मालिक, खालिक, मुदब्बिर, याद रहेगा ना? खालिक, मालिक, मुदब्बिर, किसका? मेरा और आपका या किसी और चीज का? अल आलमीन, तमाम जहानों का, सारी कायनात का। आलमीन किसकी जमा है? आलम की। आलमीन आलम की जमा है, और आलम किस से है? अलम से। और अलम किसको कहते हैं? निशानी को। तो क्या कुछ निशानी है? अल्लाह के सिवा हर चीज क्या है? आलम है, अलम है, ठीक है। यानी अल्लाह खालिक है, रब है, और बाकी क्या है? आलमीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ किसके लिए होनी चाहिए? रब के लिए या आलमीन के लिए? रब्बुल आलमीन के लिए। अच्छा, हम क्या करते हैं? उलट ऐसे होता ना, हर चीज की तारीफ करते रहते हैं और जिसने सब कुछ दिया उसको भूल जाते हैं। क्या यही शुक्र है, यही हम्द है? नहीं, ये नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें किसी अच्छी चीज को अप्रिशिएट नहीं करना,

0: कर सकते हैं, वो अल्लाह की मुख्तलिफ निशानियों को देख कर अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनमें गौर व फिक्र कर सकते हैं ना, सब कुछ ठीक है। लेकिन इन सब चीजों को देखकर किसकी याद आनी चाहिए? रब की याद आनी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, उनको अल्लाह ने बहुत बड़ी हुकूमत दी थी, इतनी बड़ी सल्तनत थी और इतना कुछ था उनके पास और इतनी चीजों का इख्तियार था उनके पास कि उसके बाद ऐसी हुकूमत किसी और को नहीं मिली। वहबली मुल्कन ला यंबगी ले अहद मिन बादी, उन्होंने कहा था अल्लाह ऐसी हुकूमत दे कि मेरे बाद किसी के पास ना हो, और बाकी उनकी दुआ कबूल हो गई। उसकी तफसील आगे कुरान मजीद में आएगी। तो एक मौके पर जंगी घोड़े उनके सामने लाए गए, तो उनको देख कर उनका दिल खुश हो गया। वैसे भी घोड़ा ऐसी चीज है, एक ऐसी अल्लाह की मखलूक है जिसे देख के आपके अंदर एक खास किस्म का वलवला उठता है। गाय को देख कर फीलिंग और होती, भैंस को कुछ और, बकरी को देख के कुछ और, बिल्ली को कुछ और, चूहे को कुछ और, कॉकरोच को कुछ और, तो घोड़े को देख कर कुछ और तरह की फीलिंग होती। इतने जबरदस्त घोड़े थे, और एक नई कतार, बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म के आला तरीन घोड़े, तो उनको देख के दिल में खुशी समाई, मोहब्बत हुई। तो क्या कहने लगे? इन्नी अहबबतु हुब्बल खैरी अन ज़िक्री रब्बी, मैंने माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की। तो बंदा मोमिन को दुनिया की किसी भी चीज से जो मोहब्बत होती है, उसकी भी बुनियाद क्या होती है? अल्लाह की मोहब्बत। एक तो कुरान मजीद में बंदा मोमिन की शान ये बताई गई है कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से बढ़ के होती, हर चीज से ज्यादा वो महबूब होता है। लेकिन उसके बाद किसी भी चीज से जो मोहब्बत होती, खा वो माल से है, खा वो औलाद से है, खा वो दोस्तों से है, खा किसी इंसान से, कुछ भी है, उसकी भी बुनियाद क्या होती है? चाहे एक फूल को देखकर आप कहते हैं मुझे फूल बहुत पसंद है, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, मुझे पहाड़ों पर जाना बहुत पसंद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप दिन में पता नहीं कितनी दफा कहते हैं आई लव दिस, आई लव दैट, ये कोई बुरा नहीं है। लेकिन बंदा मोमिन की मोहब्बत और नफरत और हर चीज क्या होती है, किसके लिए होती है? अपने रब के लिए होती है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद मालूमाती तालीम और तरबियत पर मबनी सीरीज और लेक्चर्स के लिए समात फरमाते रहिए इंस्पायर FM।
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.